इमेजिन आपने कोई चीज मूवी में देखी हो और उसके बाद उसे सड़कों पर उतार दिया जाए, मतलब आपको लगेगा ना कि ओ इन लोगों ने भी क्या मूवीज से सीखा है ये। मतलब सिंगापुर में तो बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है जो हमें लगता है कि वाओ हॉलीवुड इंस्पायर है, लेकिन इंडिया में जब कोई चीज होती है ना तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है कि वाओ इतनी दूर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि जो काफी एडवांस कहा जा रहा है सब। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि रिसेंटली इंडिया एंड यूएस ट्रूप्स, मतलब एक कॉमन जो एरिया निकल कर आता है, तो वहां पे इंडियन आर्मी ने ना रोबोटिक डॉग्स होते हैं ना, रोबोटिक डॉग्स, हाँ जी, उनको डिप्लॉय किया है। किस लिए? गन वगैरह के साथ और स्नाइपर्स के साथ। मतलब एक प्रैक्टिस चल रही है कि अगर एक टाइम आया कि हर एक एरिया को बहुत ज़्यादा स्पीड में देखना हो, बहुत अर्जेंट कोई एक्शन लेना हो, तो उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें आया ये डिसीजन, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है जी, कि ये एक इनोवेटिव स्टेप है। फिलहाल और भी जो इनोवेशन हो रही है मैं आपको बैक टू बैक बता रही हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर आपके साथ।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
3: ऐसा लगता है ना कि सिंगापुर में एक पॉइंट के बाद घूमने के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। देखो, आप अलग नजर से देख रहे हो। जब आप एक टूरिस्ट की नजर से देखोगे ना, आपको ज्यादा ऑप्शंस निकल कर आएंगे। मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस देखती हूँ, उसके बाद चीजें एक्सप्लोर करने जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाय हाय, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मुझसे ये मिस कैसे हो गई। हाँ देखो, अपना अपना नजरिया है। आप भी छोटी छोटी चीजों को ना थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाना शुरू करो तो मजा आएगा आपको। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज आपके साथ। बाय द वे, अगर आप सिंगापुर में सालों से हैं और हर तरह की प्लेसेस आपने एक्सप्लोर कर ली है, तो कुछ नया करने का वक्त आ चुका है। अगर आपको एक प्यारा सा कपल टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, वी टाइम चाहिए, दोस्तों के साथ वक्त चाहिए, तो एक सूफियाना शाम आपका इंतजार कर रही है। इवेंट का नेम है इश्क सूफियाना बाय अमित धामेलिया। अमित धामेलिया एक ऐसे सिंगर जिन्होंने आपको सिंगापुर में रहते हुए ऑलरेडी इम्प्रेस किया हुआ है। सो डेफिनेटली टाइमलेस एक्सपीरियंस होगा ये। और 26th ऑफ सितंबर सैटरडे वाले दिन 7 to 9 PM ये इवेंट होने वाला है। ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टसनसन, 60 टसनसन रोड सिंगापुर में। सो डोंट मिस दिस चांस, बिकॉज हर बार ये शो हाउसफुल हो जाता है और उसके बाद आप हमें मैसेज करते हैं कि सर अब कुछ करना। हाँ, सो टिकट्स जो है वो $60 and $80 में अवेलेबल है। डिटेल के लिए, टिकट्स के लिए कॉल कीजिए आप 8138279 पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा,

0: किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a must-be partner event.

0: आप और मैं जो है ना वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट डोंट यू थिंक कि कोई तो ऐसी जगह है जहां पे शायद लाइफ दोबारा से नॉर्मल होने में बहुत साल लगने वाले हैं. सो व्हाई नॉट एक इंसानियत के नाते हम उनके लिए स्टैंड लें. रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ एंड सिंगापुर. आई नो जब भी किसी की हेल्प करने की बात आती है, एक हाथ और लगाने की बात आती है ना, तो हम हमेशा आगे खड़े हुए हैं. सो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हो रहा है नेपाल फ्लड रिलीफ फंड. इसमें क्या है, आप ना 10 AM टू 8 PM के बीच 21 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच इनकी लोकेशन पे पहुँच कर जो भी आपको डोनेट करना है इस रिलीफ फंड के लिए, वो आप चीज़ें ऑफकोर्स वहाँ पे दे सकते हैं. इतना फ्लड आया नेपाल में, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ह्यूमन लाइफ, और वो होता है ना एक अपना घर परिवार सब कुछ खो दिया गया है. सो आप भी अपनी तरफ से इस रिलीफ फंड में अपना जो सहयोग है वो दे सकते हैं. इसके लिए पहुंचिए एंट्रेंस ऑफ लिटिल इंडिया आर्केड 48 रंगून रोड सिंगापुर. डेफिनेटली आप डिटेल्स के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9166410 पर. मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: देखो, सिंगापुर से जाकर ना आपको इंडिया जाके एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी, बिकॉज लोग बाहर से आकर इस टॉपिक पे अगर वीडियो बना रहे हैं तो अपनी भी थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है बॉस। हाँ, मतलब आप भी इधर से उधर का थोड़ा कंपैरिजन करो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजी नुपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि हमें लगता है कि यार इंडिया में तो क्या ही हो गया होगा, कितना बदलाव हो गया होगा, लेकिन अगर आप पिछले 4-5 सालों से इंडिया नहीं गए और अब आप पहुंचेंगे ना, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, पॉजिटिवली आपको बहुत चीजों में दिखेगा। सो रिसेंटली एक टूरिस्ट इंडिया पहुंचा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसने जो वीडियोज बनाई है वायरल गई है, उसने इंडिया के दिल्ली के यानी कैपिटल सिटी के जो मेट्रो स्टेशन है ना, वो जापान एंड कोरिया के मेट्रो स्टेशन से भी कंपेयर करती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा शख्स जो कि वहां जाकर सफाई देख पा रहा है एंड सारे TNCs जो है वो समझ पा रहा है, एंड एक उसका जो हैसल फ्री जा रहा है पूरा एक वेकेशन, तो हम इंडिया जाकर ऐसी बातें ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। डेफिनेटली ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कुछ और भी बातें जो डेफिनेटली बॉलीवुड की दुनिया से निकल कर आ रही है बताती हूँ। डोंट गो एनीवेयर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: आप किसी को इतना ट्रोल कर दो कि उसको फर्क ही ना पड़े तो क्या फायदा ऐसी ट्रोलिंग का। एनीवेज रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। मतलब आजकल तिल का ताड़ करने की आदत हो चुकी है, राई का पहाड़ करने की आदत हो चुकी है। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो पोस्टपार्टम के दौरान अपने वेट को लेकर थोड़ा सा कहीं छिप जाती हैं। मतलब जब तक वो अपनी पुरानी बॉडी शेप अप नहीं कर लेती हैं तब तक बाहर नहीं आती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इस फेस को एंजॉय करती हैं, जेन्युइनली चीजें समझती हैं। उनमें से एक है कटरीना कैफ, और रिसेंटली गणपति जी के जो दर्शन है उनके लिए वो पहुंची, और भी एक आध जगह जो है कटरीना नजर आई, तो उनको ट्रोल कर दिया गया उनके चबीनेस की वजह से, पोस्टपार्टम वेट गेन की वजह से। तो इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि अभी तक ये जवाब नहीं देंगी, लेकिन इन्होंने जवाब दे दिया है कि मैं अपने बेस्ट वर्जन में हूँ, मैं एज अ मॉम लाइफ जो है ना वो अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, और जो मेरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बदल चुके हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ फर्क पड़े या ना पड़े बहुत सारी बातें कर रही हैं आपका इंतजार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: अच्छा जी, सेफ का भी सेफ कैसे खेला जाता है कोई इनसे पूछे यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। सेफ का भी सेफ प्ले करने से मेरा मतलब है कि ऐसे एक्टर्स जो अपनी मूवी आने से पहले हर एक मुमकिन स्टेप लेना चाहते हैं। हाँ जी, रणबीर कपूर स्टारर रामायण मूवी आने वाली है। फिल्म मेकर्स ने 400+ करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कर रखा है। और आपको तो पता ही है, इसका जो अक्रॉस द ग्लोब वर्जन है, इंडिया से बाहर वाला वर्जन जो है ना, वो कुछ कुछ कंट्रीज में एक दिन पहले भी रिलीज हो सकता है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है जो इंग्लिश वर्जन रामायण मूवी का रिलीज किया जाएगा, इसको 30 मिनट्स और ज्यादा शॉर्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें गाने नहीं होंगे, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी जा रही है, और इस दिवाली को और ज्यादा खास बनाया जा रहा है। लेट्स सी किसके लिए ये दिवाली और ज्यादा खास होती है, फिल्म मेकर्स के लिए या फिर ऑडियंस के लिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। Check it out.

0: इमेजिन आप एक ऐसी जगह जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ हैं, इंडिया या सिंगापुर। मतलब फेस्टिवल का ऐसा सेलिब्रेशन, ओ माय गॉड। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे निपुण मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि आपसे बात करते करते मेरा भी डांडिया ढिंक टिक्का खेलने का मन हो चुका है। एक्चुअली बात यह है कि सिंगापुर में ऑथेंटिक डांडिया नाइट आपको मिल रही है। वंस अगेन वी इंडस प्रेजेंट्स बॉलीवुड डांडिया नाइट। हां जी, सो सैटरडे 10th अक्टूबर 6 PM ऑनवर्ड्स आपको पहुंचना है खालसा एसोसिएशन बिल्डिंग, और एडल्ट्स के लिए 30 सिंगापुर डॉलर प्राइस है। किड्स जिनके एज 7 to 12 ईयर्स के बीच है उनके लिए 15 सिंगापुर डॉलर, एंड 0 to 6 ईयर्स वाले बच्चे एब्सोल्युटली फ्री वेलकम है। तो टिकट के लिए टिकट मास्टर पर पहुंच जाओ या व्हाट्सएप करो 9022121 पर। सो अगर आपको लगता है कि आप डांडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो मैं एक मौका आपको दे सकती हूँ। अभी एक छोटे से डांडिया स्पेशल गाने की हिंट मैं आपको दूंगी, आपको उस गाने का सही जवाब मुझे क्विकली बता देना है। तो वो हिंट कुछ ऐसी है, बिल्कुल अगर आप पहचान गए इस गाने को तो क्विकली हमें व्हाट्सएप करके बता दो, 9151896 हमारा नंबर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।
1: दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल बिकॉज द बेस्ट काइंड ऑफ कार्डियो कम्स विद डांडिया स्टिक्स। वी इंडस्ट प्रेजेंट्स बॉलीवुड डांडिया नाइट, where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Suat! Join Kari Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 PM onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: इमेजिन आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं और आपने सोच रखा है कि आपकी नजरों में ये काम गलत नहीं है,

0: पर लेकिन हाँ, दुनिया तो आपको नहीं बचा सकती ना। आप जैसे ही पकड़े जाते हैं, आप कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे से गलती से हो गया, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ऐसी बहुत सारी फनी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर निकल कर आती है। लोग इस पर कमेंट कर देते हैं क्या कर्मा। हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज, अगर हम इंडिया के गुजरात स्टेट की बात करें तो वहां के सूरत सिटी में क्या चल रहा है बताती हूँ। एक चोर जो है ना, वहाँ एक घर में घुसा और जो विंडो होती है ना, विंडो ग्रिल वाली विंडो होती है ना, राइट, उस विंडो में ऐसा घुसा और ऐसा निकलने की कोशिश की कि वो फंस गया। पुलिस भी आ गई, उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो गई, फिर भी वो बाहर नहीं निकला। अरे भाई साहब, जो फन निकल कर आया ना ये वीडियो, मैं आपको क्या बताऊँ यार। तो ऐसे फन और ऐसी ट्रोलिंग और ऐसे मीम्स आपको मिलते रहते हैं। डेफिनेटली रेडियो मसी 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो रखिए, ताकि आपको हर तरह से होलसम तरीके से एंटरटेनमेंट मिलता रहे। मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
1: दिस इज रेडियो मसी 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: वॉच सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: सो द पॉइंट इज कि यार हमें मन की शांति चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, हमें तो कंप्लीटली एक ऐसा एंजॉयमेंट चाहिए जो मतलब थोड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो जाए, थोड़ा सा लेटेस्ट जेंजी एक्सपीरियंस भी हो जाए और घर के बड़ों से लेकर बच्चे हर कोई उसे अटेंड कर पाए। सो डेफिनेटली ये जो बकेट लिस्ट है इसको टिक ऑफ करने का वक्त आ चुका है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आज नुपुर आपको बताना चाहेगी बिना देरी के कि सिंगापुर का सबसे पहला भजन जैमिंग सेशन होने वाला है। हांजी, इंडियाज फर्स्ट सिबलिंग्स ड्यूओ यानी प्राची और राघव सिंगापुर आने वाले हैं। इस 26 सितंबर शो होने वाला है जिसका नाम है बैकस्टेज सिबलिंग्स, जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। भजन जैमिंग होगी, सात्विक कुजीन होगा, होलसम एक्सपीरियंस मिलेगा। टिकट्स के लिए सिस्टिक सिंगापुर आप लॉग ऑन कर सकते हो एंड 26 सितंबर एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर में ये होने वाला है। सो ये भजन जैमिंग आप एंजॉय करोगे लेकिन आप डिस्काउंट भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 10% ऑफ मिल रहा है आपको स्टैंडर्ड टिकट्स पे एंड जब चेकिंग होगी तो आपको अपना आईडी प्रूफ या रैंडमली वो सब चीजें शोकेस करनी होगी। अगर आप फुल फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो बाय 4 गेट 2 टिकट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड जी आपको 6 टिकट्स 316.02 सिंगापुर डॉलर में मिल जाएगी। सो आप 6 टिकट्स पर ट्रांजेक्शन जरूर ले सकते हैं। मैं आज नुपुर आपके साथ कुछ और भी डिटेल्स बताएगी ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: Imagine एक handsome सा लड़का और बहुत ही intense सी कहानी और बहुत सारा suspense and thriller. और डायरेक्टर एकता कपूर एंड शोभा कपूर, ये कॉम्बिनेशन देखना तो बनता है बॉस. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. और वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूअसली एक जैसी मूवी देखने के बाद कुछ अलग देखने का मन हो तो पॉसिबल है. हाँ जी, दिस 25th सितंबर अक्रॉस द आइलैंड रिलीज हो रही है वन मूवी. हाँ जी, द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल के बीच एक राज छिपा हुआ है, पुराने श्राप छिपे हुए. काइंड ऑफ दिस एक इंडियन माइथोलॉजी के अराउंड मूव करेगी ये मूवी. एंड इसमें आप सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया देखने वाले हैं, दीपक कुमार मिश्रा एंड अरुणभ कुमार ने डायरेक्ट करी है, एकता कपूर शोभा कपूर ने प्रोड्यूस करी है. एंड डेफिनेटली ये मूवी आपको एंटरटेन करने वाली है, विच इज ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर. एनीवेज, आप अपने प्लान्स बनाइए, कुछ हटके बनाइए, बोरिंग वाले हटाइए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं आरजे नूपुर आपके साथ.
2: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था.
3: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं.
2: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था.
3: One ancient warning.
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
3: And then there is a man who crosses the boundary.
5: हमें चिंता नहीं उनकी.
3: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
5: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है.
3: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: देखो, खर्चा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक लिमिट तय कर देंगे तो उसमें दिक्कत क्या है, जरा बताओ मुझे। हाँ देखो, अगर आपने खर्चा किया है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए आप किसी ना किसी की जेब तो थोड़ी सी आप खाली करेंगे। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और ऐसा मुझे लगता है कि जब फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो डायरेक्टर्स ये सोच कर खर्चा कर देते हैं कि जब लोग आएंगे, टिकट्स खरीदेंगे तो हो जाएगा अपना काम। हाँ, तो ऐसा सोच सोच के वो इतनी चीजें महंगी कर देते हैं, ऐसी महंगी कर देते हैं कि डर लगने लगता है कि क्या आने वाले टाइम में हमारी जेब से ये सब जाने वाला है। हाँ, सो मुझे लग रहा है रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाह रही हूँ कि अक्षय कुमार स्टारर डायरेक्टर विपुल शाह जी के साथ जो एक साईफाई मूवी आने वाली है, सामुक, हाँ जी, एक थ्रिलर मूवी कही जा रही है, इसका शूट वगैरह चल रहा है, लेकिन रियल हेलीकॉप्टर्स से लेकर रियल प्रॉप्स यूज किए जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इस थ्रिलर मूवी में जो हॉरर एक्शन माइथोलॉजी दिखाई जाएगी तो उसमें वीएफएक्स का काम होगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग की तरह वीएफएक्स को थोड़ा लिमिटेड किया जा रहा है और रियल चीजों को ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेट्स सी, रियलिटी चाहे जितनी डाल दो, एक पॉइंट के बाद उस मूवी में अगर कंटेंट के नाम पर अच्छी कहानी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। डोंट यू थिंक सो? रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान। लेकिन अभी के लिए मैं जा रही हूँ आपके लिए बैक टू बैक बढ़िया वाली गाने लगाकर। मुलाकात होगी अब बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
1: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
5: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
6: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे। हेलो हाय वेलकम नमस्ते नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 पर शुरू हो चुका है हम सभी का फेवरेट शो ऑफ कोर्स मेरा तो बहुत ही ज्यादा मस्ती 90s मिक्स टेप है इसका नाम। वेल भाई वही बात है जो हम हमेशा करते हैं कि कभी कभी हम कोई साउंड सुनते हैं तो हम सीधा 90s के टाइम पर जी हाँ बिल्कुल पहुंच जाते हैं। एक वो आपको ये वाली साउंड आपको याद है, ये शार्पनर का इवॉल्व जो होना है वो भी हमने 90s में देखा हुआ है। फ्रॉम द नॉर्मल द मैनुअल शार्पनर्स टू दीज, ये जो बड़े बड़े करके आते थे ना कि आप उसमें डालो तो आपको उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको शार्प करके दे, यू रिमेम्बर बट उसी के साथ साथ यू नो फोन की घंटी हो गई, जैसे ही कहीं पर ट्रिंग ट्रिंग मैं बोलूँ तो ऑटोमेटिकली यू नो दैट हम 90s की बात कर रहे हैं। एंड यू नो देर आर सो मेनी साउंड इफेक्ट एंड साउंड विच टेलीपोर्ट्स अस टू दैट अमेजिंग 90s का दशक। बट वेल एनीवेज ये सारी चीज तो है ही है, ये ऑब्वियस चीजें 90s की हम तो बात करेंगे ही करेंगे। हम वो टाइनी डिटेल्स जो है उसको भी पकड़ पकड़ कर अपना मेमोरी थोड़ा सा जॉग कराएंगे। यू नो इट हैड अ वेरी स्पेसिफिक टेक्सचर 90s का जो दौर था, स्कूल नोटबुक के जो मार्जिन है वो, देन मार्केट में वो लटकते कलरफुल प्लास्टिक टॉयज, ड्रॉइंग बुक के ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव स्केच पेन के कलर्स, क्रिकेट खेलते हुए किसी का परमानेंटली लास्ट बॉल बोलना, टेलर के पास कपड़े के साथ मैगजीन की फोटो लेकर जाना कि ऐसे करके बनवानी है, हेयर कट के बाद घर आके सबका रिव्यू लेना, एंड बॉलीवुड 90s का वो भी कितना ही इंटरेस्टिंग था। तो सब सब कवर किया जाएगा आज के एपिसोड। एक डेकेड को देखने का नहीं है, उसको सुनने का, स्मेल करने का, टच करने का, थोड़ा सा फिर से जीने का है। मैं आपकी 90s वाली आंसरा, एंड बस रहिए मेरे साथ, यू विल हैव द मोस्ट अमेजिंग अमेजिंग 3 घंटा ऑफ योर टुडे, है ना? लेट्स गो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a musty partner event.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
4: Gigi.
3: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: भाई जुगाड़ का जो लेवल 90s वालों ने सेट कर रखा है उसको क्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल है। हम कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास है 90s वाला जुगाड़ फॉर एवरी सिंगल थिंग। रेडियो मस्ती 24/7, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ और चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s की स्कूल लाइफ में एक मिनी हार्ट अटैक कभी कभी आ सकता था। टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रही है, आप फुल स्पीड से नोट्स कॉपी करने की कोशिश कर रही है एंड सडनली आपका पेन चलना बंद हो जाता है। आप उसको खिच खिच खिच स्क्रिबल करते हो साइड में, कुछ नहीं निकल रहा। फिर उसकी रिफिल निकाल के देखते हो, आपको लग रहा है यार इसमें इंक तो है, तो प्रॉब्लम क्या है? सो 90s में पेन चलाना सिर्फ राइटिंग का स्किल नहीं था, ट्रबल शूटिंग का भी स्किल था। रेनॉल्ड्स 045 या सेलो का पेन या कोई भी आपका फेवरेट बॉल पेन हो, फर्स्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता था, नोटबुक जो भी आप यूज कर रहे हो उसका लास्ट पेज पे जाओ और वहां पे ऑलरेडी दुनिया भर के मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है, जिगजैग, सर्कल्स, एग्रेसिव शेडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे पेन नहीं चला रहे, ECG स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि चल जाना यार, थोड़ा सा चल जा। एंड देन एक टाइनी ब्लू लाइन दिखी एंड हम करते अच्छा हमारा पेन जिंदा हो गया, CPR दे के जिंदा करते थे हम ऐसे दो वर्ड्स लिखे फिर बंद हो गया। भाई ये कैसा धोखा। अब लेवल 2 की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेन को वायलेंटली ऐसे झटक झटक के शेक करना, टिप नीचे एंड टाक टाक टाक। देन रिस्क था, इंक कभी कभी नोटबुक पर में नहीं यूनिफॉर्म पर भी आ जाती थी। एंड देन केम द एडवांस्ड इंजीनियरिंग, पेन खोलो, रिफिल बाहर निकालो, टिप को इंस्पेक्ट करो लाइक अ ट्रेंड टेक्नीशियन। कोई उसको हाथ पर रब करता, कोई पेपर पे प्रेस करता और कोई कोई लेजेंडरी लोग रिफिल के पीछे से ऐसे फूक मार मार के बॉस हम पेन में इंक नहीं भेज रहे थे, CPR मैं कह रही हूँ ना वो दे रहे थे। और क्लास में हर ग्रुप में एक सेल्फ अपॉइंटेड स्पेशलिस्ट होता ही होता था। आप स्ट्रगल कर रहे हो और वो बोलेगा कि दे मैं चलाता हूँ यार तेरे, तू तो रहने ही दे, एंड यू काइंड ऑफ हैंड इट ओवर। वो दो स्क्रिबल्स करेगा एंड सडनली परफेक्ट ब्लू लाइन बहती हुई इंक की धारा चलने लगी एंड वी गो लाइक एक्सक्यूज मी, मेरे हाथ में तो तुम चल नहीं रहे थे, इसके हाथ में रेनॉल्ड्स का कमबैक टूर ऐसे कैसे हो गया। सो वो पेन वापस आपको देते हैं विद दैट सुपीरियर एक्सप्रेशन दैट भाई चल तो रहा है, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट। एंड रेनॉल्ड्स 045 दैट स्लिम वाइट बॉडी एंड द ब्लू कैप, कितने पेंसिल बॉक्स इसका परमानेंट रेजिडेंट था। पेन भी स्कूल पर्सनैलिटी का पार्ट हुआ करता था दोस्त, किसी को फाइन राइटिंग चाहिए, किसी को डार्क इंक चाहिए, किसी का हैंड राइटिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर पेन से अच्छा आता था। एंड प्लीज टेल मी आई वॉज इन द ओनली वन हु बिलीव दैट ये तो मेरा लकी पेन है, एग्जाम तो मैं इसी पेन से दूंगी। एंड देन एग्जाम के बीच में वही लकी पेन कभी कभी डिसाइड करते थे कि टुडे आई रेस्ट, इमीडिएटली भाई इधर उधर से एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पेन है। एंड टीचर का आवाज आता था, टॉकिंग क्यों हो रही है मैम, चीटिंग नहीं, स्टेशनरी इमरजेंसी है भाई। सो द होल थिंग, कोई भी चीज रिटायर नहीं हुआ करती थी 90s के वक्त में, गिव अप वाज नॉट एन ऑप्शन। पहले लास्ट पेज पर 400 सर्कल्स बना के उसके बाद उसको चलाना ही पड़ता था, करना ही पड़ता था। आज भी हम इसी उस पे चल रहे हैं, आपको नहीं लगता?

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
3: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
2: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
3: One ancient warning.
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
3: And then there is a man who crosses the boundary.
5: हमें चिंता नहीं उनकी।
3: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
5: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
3: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
6: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। पता नहीं 90s के वक्त में घर के वो स्टील के ग्लास में पानी कुछ एक्स्ट्रा ही ठंडा लगता था। टिल डेट आई फील समथिंग लाइक दैट। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और चल रहे मस्ती 90s मिक्स टेप। नाउ मई जून की कड़कती दोपहर, आप बाहर से खेलकर घर आए हो, आपका चेहरा लाल हो रखा है, बाल चिपके हुए, पसीना से तर बतर, सांसें ऐसे चल रही है जैसे ओलंपिक का फाइनल खेल के आप आ रहे हो। घर में आप ढूंढते पानी पानी, अब पानी नॉर्मल ग्लास में आपको नहीं चाहिए। यू गो स्ट्रेट टू द फ्रिज, आप निकालते हो बॉटल और कबर्ड में से वो स्टील का ग्लास, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द साइंस सेज बट 90s के जो बच्चे हैं ना, दे नो द ट्रूथ। फ्रिज का पानी स्टील के ग्लास में आते ही 20% ज्यादा ठंडा हो जाता था। पानी पोर किया, विद इन सेकंड्स ग्लास के बाहर वो एकदम छोटे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो पूरा ग्लास ठंडा, इतना ठंडा कि पकड़ते ही वो ऐसी वाली आवाज निकलती थी। पर छोड़ेंगे ना, वो तो बिल्कुल नहीं होता, हमने सीखा ही नहीं है। दोनों हाथों से उसको पकड़ते थे, फिर कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प, बीच में ऑफकोर्स अगर पेरेंट्स घर पे हो तो धीरे एकदम फ्रिज का पानी मत पियो, दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्कोर जो है वो चलता रहता था। बट टू लेट, हाफ ग्लास जो है वो ऑलरेडी इनसाइड है and then that one giant satisfied बहुत फाइव स्टार बेवरेज का एक्सपीरियंस, कोई लेमन नहीं, कोई मिंट नहीं, कोई फैंसी आइस नहीं, पानी स्टील का ग्लास एंड 90s में इट इज डन। और स्टील ग्लास की एक और स्पेशलिटी थी, उसमें ना मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था कि थोड़ा पानी अगर कोई बोलता था कि ले आना, आप भर के ले आए राइट टिल द टॉप। अब बेडरूम तक जाते हुए स्टेप वन थोड़ा सा वो छलकता था, स्टेप टू फिर से छलक रहा है, बाय द टाइम आई थिंक जिसने मांगा है उधर पहुंचता थोड़ा पानी वैसे ही इधर उधर हो गया है। और वेट स्टील ग्लास स्लिपरी लिटिल फेलो, ग्रिप जो है वो बड़ी केयरफुल करनी पड़ती थी, बिकॉज एक बार हाथ से निकला तो ऐसी, मतलब स्टील का ग्लास किसी मिडिल क्लास घर में नीचे जमीन पे गिरना और पूरे मोहल्ले को सुनाई देना, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। एकदम से ठंडा पानी नहीं पियो एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारी साउंड्स फेमिलियर है ना, इट्स 90s का साउंड। लग्जरी का डेफिनेशन तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, गर्मी से घर आओ, फ्रिज खोलो, स्टील का ग्लास भरो और पहला सिप जैसे ही आए, आह जिंदगी सेट। क्या खूबसूरत दिन थे ना 90s के।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210. पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
2: तारीख में लॉर्ड जब भी हम ये कहते हैं, हमारे सामने सनी देओल प्रकट हो जाते हैं इमेजिनेशन में कि भाई ये तो वही है वो। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है यहाँ पर। भाई 90s के बॉलीवुड वालों, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ समथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। दामिनी मूवी का ये डायलॉग है विच बिकेम फेमस, एंड जैसे ही मैंने कहा तारीख जज साहब सनी देओल क्लियर, सब क्लियर। सो कोर्ट रूम है, अमरीश पुरी जी इज ऑन वन साइड एंड देन दैट वॉइस व्हेन व्हाट हैपेंस। अब सनी देओल को तारीख पे तारीख करते हुए हटा दो, देयर इज नो सनी देओल सेइंग दिस डायलॉग, बट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल राइट भाई, क्योंकि सनी देओल और दामिनी का लॉयर गोविंद ऑलमोस्ट इनसेपरेबल है। हियर्स द ब्रिलियंट जो है 90s का ट्रिविया जो मैं लेकर आई हूँ, आपको मजा ही आ जाएगा सुन के। ना सनी देओल वॉज नॉट ओरिजिनली सपोज टू प्ले ये वाला रोल, बट डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी जो है हैज कन्फर्म्ड इन फैक्ट दैट ही हैड एक्चुअली थॉट ऑफ ओम पुरी जी इस रोल के लिए। हिज आइडिया वॉज टू क्रिएट दिस पावर हाउस कोर्ट रूम का कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन ओम पुरी एंड अमरीश पुरी जी। नाउ दैट इज एन ऑल्टरनेट kind of 90s universe I would love to see. Om Puri ji versus Amrish Puri ji, two extraordinary voices, okay, courtroom, imagine karo wo intensity kya hoti, but it did not happen. According to director sahab, there was a misunderstanding between the producer and the Om Puri ji ke side, ek kuch fees ko lekar kuch misunderstanding ho gayi thi and fir inhone socha ki let's try Sunny Deol, and Sunny Deol of course unhone agree kar liya, and by then matlab I think Sunny Deol ऑलरेडी घायल के लिए कर चुके थे, ही वॉज अ मेजर स्टार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, येट गोविंद डजंट इवन अराइव अर्ली इन द दामिनी मूवी इफ यू रिमेंबर। तो उन्होंने कहा कि द कैरेक्टर एंटर्स अराउंड रील नंबर 12 पे, एंड डिस्पाइट हैविंग अ बिग स्टार इन दैट रोल, ही डिडंट सडनली रीराइट द फिल्म टू ब्रिंग सनी देओल इन अर्लियर। संतोषी जी का पॉइंट ये था कि कैरेक्टर शुड एंटर व्हेन द स्टोरी नीड्स हिम। अगर आज की डेट में डायरेक्टर्स को ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो तारीख पे तारीख की कसम खा के कहती हूँ मूवी चलेगी ही चलेगी, आपको नहीं लगता? आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हाई 90s के मूवी वर्क्ड एंड इट स्टिल वर्क्स व्हेन यू रीवॉच देम, बिकॉज इट कनेक्ट्स यू एंड डायरेक्टर गेव यू जब वो कैरेक्टर्स जब उनकी जरूरत थी इन द मूवी। सही में यार, सच्ची दामिनी मूवी का गाना तो बनता है यार, इतनी बात कर ली है ना, चलो लेट्स गो।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: छब्बीस जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये भाई हर रेडियो स्टेशन का फेवरेट गाना है। कौन सा बताओ, गेस करो। बॉर्डर मूवी का, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई वॉल्यूम बढ़ जाता है 1997 बॉर्डर मूवी और फिर आते हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ जी की आवाज। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। उफ, मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा गाती हूँ। आप मतलब होश ही खो बैठोगे मैंने अगर गाना शुरू किया। दिस बी टू ब्यूटिफुल अ सॉन्ग टू सिंग एज वेल। एंड सडनली वेन एवर दिस प्लेज यू आर नॉट कैजुअली लिसनिंग एनी मोर बिकॉज दिस वॉज नॉट वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो सिर्फ हिट हुआ, इट स्टेड विद अस। स्कूल फंक्शंस में सुना, अभी बताया 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में सुना, टीवी पे बॉर्डर बार बार रिपीट हुआ तब सुना, कसेट पे सुना। और कितने घरों में वो बॉर्डर की कसेट, ओ माई गॉड, इट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। बट हियर इज द क्रेजी पार्ट, द मेलोडी इस गाने की जो है बिहाइंड वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बर्ड सॉन्ग्स ऑफ 90s, इट वॉज वंस रिजेक्टेड। दैट्स राइट, इट वॉज रिजेक्टेड। अनु मलिक जो है वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे, याद करते हुए, दैट ही हैड प्लेड अ वर्जन ऑफ दिस मेलोडिक आइडिया किसी और प्रोड्यूसर को, एंड प्रोड्यूसर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें, एंड ट्यून वॉज रिजेक्टेड। सो नॉर्मली कहानी वही खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट समवन एल्स इन दैट रूम जो है रिमेम्बर्ड कि भाई अनु मलिक साहब ने कुछ ऐसी धुन तो बनाई थी। कौन थे पता है वो? जावेद अख्तर जी। ईयर्स लेटर व्हेन बॉर्डर वॉज बींग मेड, जावेद अख्तर जी जो है He reminded Anu Malik कि तुमने वो एक धुन सुनाई थी ना उस दिन बैठे हुए, तो वो याद है? Imagine, you know, a melody somebody did not want and it was rejected, had quietly stayed with somebody else उनके दिमाग में, and then came another surprise. Anu Malik had described being given pages and pages of material इस गाने को बनाने के लिए, accounts put it at roughly 11 to 15 pages and his reaction was essentially, bhai, where is the normal song ka structure? Mukhra kahan hai? Antra kahan hai? Antra waise yahan pe hai. Because Sandeshe Aate Hai was not going to behave like a neat little filmy song. It had letters, ek longing ki, feeling, soldiers remembering home, families are waiting and that recurring question of ki ghar kab aoge. So instead of forcing those words into conventional box, the composition jo hai grew into the emotion and what emerged was nearly 10 minutes. It's long. Think about that. Aaj ki date mein hook within 15 seconds hai na in the world. A long song, no rush. It takes its time. Millions listen to it. That whole thing. बिकॉज जावेद अख्तर साहब के वर्ड्स में अनु मलिक की मेलेडी, सोनू निगम एंड रूप कुमार राठौड़ की वॉइस, दे वर नॉट मेयरली गिविंग बॉर्डर अ साउंड ट्रैक, दे वर गिविंग द फिल्म उसका दर्द। एंड देयर इज समथिंग आई लव अबाउट द रिजेक्टेड ट्यून स्टोरी, दैट वी ऑफ्टन थिंक दैट आइकॉनिक सॉन्ग्स जो है मस्ट हैव अराइव्ड विद एवरीबडी इमीडिएटली सेइंग कि यही है वो, दिस इज इट। नहीं, समटाइम्स समबडी सेज नो, द ट्यून गेट्स पुट असाइड, टाइम पासेस, एक बंदे को याद रहता है, फिर वो एक सही फिल्म आती है, सही वर्ड, सही वॉइसेस एंड द राइट मोमेंट, एंड दिस काइंड ऑफ मैजिक एंड सॉन्ग्स हैपेंड दैट टिल डेट, जो कि मैं अभी प्ले करने वाली हूँ ये वाला गाना, यू विल फील द सेम इमोशन बिकॉज खून पसीना रूह जो डाली है इस गाने में, ओहो हो, अब तो सुन ही लेते हैं ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
4: GG Mart, your personal grocer.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day. कई चीजों का 90s में सोल्यूशन होता था, धूप दिखा दे सब ठीक हो जाएगा, धूप दिखा दे। आजकल हम खुद ही को कहते हैं खुद को धूप दिखा दे, विटामिन सी की तुझे बहुत जरूरत है। रेडियो मस्ती 24/7 आंसर आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड ये बहुत ही नॉर्मल एक जो है लाइन है कि आज धूप अच्छी है, गद्दे बाहर निकाल दो। आपने भी किया होगा, नहीं याद आया? एक्सक्यूज मी, गद्दे को विटामिन डी, हाँ सॉरी विटामिन डी, विटामिन सी क्यों बोला मैंने, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है जो उनको बाहर जाना है। बट इफ यू हैव ग्रोन अप 90s के मिडिल क्लास हाउस में, यू नो दिस थिंग, एक अच्छी सनी मॉर्निंग मिली नहीं, सडनली घर का आधा बेडरूम छत या बालकनी में शिफ्ट हो जाता था। गद्दे, रजाई, द पिलोज एंड द ब्लैंकेट सब लाइन से धूप जो है सेक रहे होते थे। बेसिकली फैमिली अंदर बेडिंग का गोवा ट्रिप बाहर चल रहा होता था। एंड मैट्रेस मूव करना इन इटसेल्फ वाज एन ऑपरेशन, ओके? एक साइड किसी अडल्ट ने पकड़ा घर में बच्चे, तो दूसरी साइड से बिल्कुल आपने पकड़ा, फिर तू है सीधा पकड़ो, पकड़ा तो है, नीचे मत घसीटो, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड समहाउ अ सिंपल मैट्रेस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 400 किलोस का मोमेंट एज अ चाइल्ड, जब उसको कहा जाता है कि उठाओ मदद करो मुझे, फिर छत पर उसको स्प्रेड करो, एक साइड धूप, थोड़ी देर बाद जो है इसको पलट देना होता है, बिकॉज अपेरेंटली गद्दे की टैनिंग भी इवन ही होनी चाहिए। और रजाई, विंटर के बाद जो हैवी रजाइयां धूप में जाती थी, दैट स्मेल, डू यू रिमेम्बर? आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड आई कैन जस्ट, या मेरे को वो स्मेल, आई इट्स सो स्ट्रॉन्ग, राइट? आई कैन नॉट प्रॉपरली इवन यू नो डिस्क्राइब इट। कपड़े की स्मेल, वॉर्म कॉटन एंड दैट सनशाइन, थोड़ी सी कबर्ड वाली स्टोर्ड स्मेल दैट इज काइंड ऑफ डिसअपीयरिंग, एंड व्हेन यू टच इट, गरम। नेचुरली यू नो बच्चों का फर्स्ट इंस्टेक्ट होता है हेल्प, ऑफकोर्स नॉट। आपने छत पे रख दिया है, बालकनी में रख दिया, भाई जंप, उस पर जंप करने में क्या मजे आते थे। अंदर डांट पड़ती थी कि उतर जाओ, धूप लगने दो, हम कहते थे बस एक मिनट, वन मिनट यू नो बिकम्स अ रेसलिंग मैच और अ पिलो फाइट, एंड समवन काइंड ऑफ लाइज डाउन ड्रामेटिकली कि मैं भी धूप साथ में, गद्दे के हम ही सेकेंगे। एब्सोल्युटली यूजलेस वर्क फोर्स डूइंग ऑल दोज अमेजिंग 90s वाली थिंग। एंड देन केम द डस्ट बीटिंग सेरेमनी, गद्दा या रग जो है उसको खड़ा करके वो सीख वाली झाड़ू से या फिर हाथ से ही थाप थाप थाप थाप, और फिर वो डस्ट के क्लाउड्स निकलते थे, एंड एवरीबडी यूज टू गो कितना गंदा हो गया है, एज इफ वी हैव पर्सनली डिस्कवर्ड पोल्यूशन, इतनी मिट्टी थी इसमें। एंड देन फिर दूसरी हिट थाप थाप, एंड वियर्डली वेरी वेरी सैटिस्फाइंग। बट माई फेवरेट पार्ट वॉज इवनिंग, क्योंकि जब धूप कम होने लगती थी एवरीथिंग कम्स बैक इन साइड, फ्रेश बेड शीट, वॉर्म मैट्रेस, पिलोज समहाउ वर फ्लफियर, एंड एट नाइट वेन यू गॉट इन टू द बेड देर वॉज दिस वेरी पर्टिकुलर सन वॉर्म्ड काइंड ऑफ स्मेल। मतलब लिनन मिस्ट नहीं था, फ्रेश कॉटन फ्रैगरेंस, आजकल तो बहुत कुछ निकल गया है, इट वॉज दैट धूप का स्मेल, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो राइट, आई एम श्योर यू नो, तभी तो आप सुन रहे हो और इमेजिन भी कर रहे हो मेरे साथ मस्ती 90s मिक्सटेप पर।

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। I have two very funny memories isse, and I understand why my mom is like this. Radio Masti 24/7 antar aapke saath Masti 90s mixtape. Ye hai is shandar show ka naam. Bhai 90s ke parents ko agar aaj ke ripped jeans doge to wo silenge hi na. उनका रिएक्शन फैशन पर नहीं होता है, उनका रिएक्शन होता है कि इसके पूरे पैसे दिए हैं और बहुत सारे पैसे दिए हैं। बिकॉज हमारे बचपन में जीन्स का नी की तरफ से जो हमारे हाँ वहाँ पे फटने का स्टाइल ही नहीं था ना, दैट वॉज एन इंसिडेंट। एंड यूजुअली कैसे होता है ना कि गली में आपने क्रिकेट खेला या फिर आप साइकिल से गिर गए, स्कूल से आके यू नो ग्राउंड में स्लाइड मार दी और घर पहुंचे नहीं कि सीधा दिख जाता था मम्मी को कि ये कैसे फट गया। हाँ, एंड देन आप नी चेक कर रहे हो कि चोट लगी या नहीं लगी, मम्मी जीन्स चेक कर रही है, नई जीन्स थी तो ऐसे देखो फट गई ना। अब प्रायोरिटीज, आई मीन टेल मी अबाउट इट, बट जीन्स फट गई मतलब जीन्स खत्म नहीं हुई है। मैं कह रही हूँ ना 90s में हम कोई चीज छोड़ते नहीं थे। 90s के घरों में रिपेयर डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता था कि इस पे पैच लग जाएगा। एंड दिस वर्ड पैच, कितने कपड़ों की जिंदगियां बढ़ाई हुई है इसने। मैचिंग डेनिम मिल जाए तो बहुत ही शानदार। यूजुअली शेड हमेशा ही इस पैच का कुछ और ही होता था कि जीन्स डार्क ब्लू है, पैच इमोशनली ब्लू, टेक्निकली पर्पल। कभी पैच अंदर से लगता, कभी ऊपर स्टिचेस क्लियरली विजिबल होती, कभी टेलर रेक्टेंगल जो है वो वहाँ पे बना देता, और कभी मम्मी क्रिएटिविटी दिखा दे तो फिर यहाँ कोई डिज़ाइन भी लगा देते थे, है ना। सो नाउ यू हैव रैंडम अ स्टार और अ फ्लावर और अ बैच काइंड ऑफ अ थिंग सिटिंग एग्जैक्टली ऑन योर नी। That is fashion by accident. Tell me about it, because a lot of big, really popular brands, they are doing the same thing, getting all of these things. ये सारी चीजें करके जो हमारी मम्मियाँ कर चुकी है वो मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में बेच रहे हैं। बट फिर उसके बाद लेट्स गो बैक टू द 90s। सो अगले दिन वो जीन्स पहनकर आप फ्रेंड्स के सामने जाते हैं एंड फ्रेंड्स कहते हैं ओए पैच लग गया एंड ऑल दोज थिंग्स। आई वॉज या थोड़ा एम्बेरसिंग लगता था, बट आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता था। दैट फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स, we didn't want to throw it away either, right? Because ek bar pair becomes this perfectly comfortable thing, bhai attachment ho jata hai, and I have got this attachment with all my jeans. Jab tak unke halaat gande nahi ho jate hain, I just don't let it go. And that's what jeans are supposed to do also. Jab aapka ek comfort level dho ke aur ye pehen ke set ho jata hai na, it becomes kind of your go-to things. Wo do teen cheeze hi aap jeans badal ke jo hai पहना करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरा रिप्ट जीन्स जो है देख कर, सिंगापुर में आई हुई थी, सिल दिया था। आई केम बैक, मैं यही मस्ती से शो वो करके वापस गई, एंड सडनली आई एम सीइंग दैट, एंड शी वाज सो प्राउड कि आई फिक्स्ड इट, एंड आई कुडंट लाइक, वो इतनी ज़्यादा खुश थी, एंड आई वॉज लाइक, एंड कितना महंगा आता है रिप्ड जीन्स, आपको पता ही होगा, लिवाइज की जीन्स थी वो। मैं आज तक नहीं भूल पाई ये हादसा जो मेरे साथ हुआ। इनफैक्ट इस एक जीन्स के चक्कर में हमारे घर का जो है किचन वाला कपड़ा भी बन चुका है, वो बड़े एक्सपेंसिव शौक हो गए मेरे। सुनते रहिए मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
1: Un pero par kisi kali अनजानी शक्ति का पहरा था।
0: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
0: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
0: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
0: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो। जिनकी शेर सवारी है।
0: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: में अगर आपके घर में ताल की कसेट या सीडी थी, देन चलिए इसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो। अगर ताल की कसेट या सीडी थी, देन आई हैव अ फीलिंग उसका रिवाइंड बटन आपका काफी ही बिजी रहा होगा, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ दोज एल्बम्स जहां पे फेवरेट सॉन्ग चूज करना इट्सेल्फ वॉज वेरी डिफिकल्ट। ताल से ताल मिला जो टाइटल ट्रैक था, देन देयर वॉज इश्क बिना क्या जीना यारो, नहीं सामने तू, रमता जोगी, एंड सडनली व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ऐश्वर्या राय के डांस मूव्स एंड अनिल कपूर का वो फुल फ्लैम्बॉयंट विक्रांत मोड एंड अक्षय खन्ना, एवरीथिंग कम्स फ्लडिंग बैक। बट ताल के म्यूजिक के पीछे जो प्रोसेस था ना बॉस, वो भी ऑलमोस्ट एक फिल्म के बराबर है। सो AR रहमान का म्यूजिक था, वी ऑल नो राइट, एंड ही सेड दैट द टाइटल ट्रैक ताल से ताल मिला वॉज वन ऑफ द टफेस्ट songs for him to crack. At one stage he had around 13 different musical ideas uske liye. 13. Hum 90s mein cassette par ek gana choose nahi kar pate the. Rehman sahab gaane ek gaane ke liye 13 possibilities bana rahe the. And Taal was not made in a hurry either. Bhai Subhash Ghai sahab kehte hain he spent around 70 nights working on film ka music, while Rehman sahab jo hai he spent months on the score. And also like he used to work like 9 PM to 6 AM, so he was like totally into it. But here's one of my favorite stories, and I was like, चलिए बात करते हैं। गाना था इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना। It actually existed even before the movie was started and usko banana shuru kiya gaya tha. So Rehman sahab and Subhash Ghai sahab, earlier they had been working on this another film, Shikhar naam ki ek movie thi. Now that film never got made, and one of its compositions, yeah, that survived, and it was this gana Ishq Bina. Years later it found its home in Taal. Rehman sahab himself jo hai, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये शिखर के लिए बनाया गया था। एंड देन रहमान साहब डिड समथिंग फैसिनेटिंग विद द सॉन्ग, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। सो फॉर कमिता कृष्णमूर्ति जी का वर्जन, ही सेज दैट उन्होंने रिकॉर्ड किया था अराउंड 15-16 मिनट्स, बिकॉज ही वॉन्टेड हर टू कीप इम्प्रोवाइजिंग रादर देन सिंपली सिंग वन फिक्स्ड वर्जन। सो घई साहब रिमेंबर्ड की एक्सपेक्टिंग द सेशन टू टेक मे बी एक घंटे में हो जाएगा, इंस्टेड रहमान साहब केप्ट सेइंग कि कविता जी अगेन कीप गोइंग कीप गोइंग। कविता जी कंटिन्यूड singing over looping rhythm for hours. Why? Because Rehman sahab was waiting for those unexpected little moments jahan par magic hoga. And suddenly I kind of hear that album differently, because we remember Taal as this incredibly polished 90s ka soundtrack, but behind that polish was experimentation, multiple tunes, long nights, and it was almost getting abandoned, right? But then Taal happened and the song got home. And what a home is that. Abhi main yahi gana play karne wali hoon, and we are going to listen to it in a very different manner once again on Radio Masi 24/7.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: Oh God, it seems like I have got too many Rehman Sahab stories 90s ki baat karte hi, but this is what it is. Rehman Sahab was doing his thing in the 90s. Radio Masti 24/7 Antrop ke saath Masti 90s mixtape aap sun rahe ho. Ek aur gaane ke bare mein main batana chahti hu, and this is one of those songs jahan par we completely live it. कहीं पर भी आप बजा दो जैसे ही उसका हुक वाला वो आता है ना, हम लोग स्टेप्स भी कर देते हैं, फ्रॉम कोरियोग्राफी टू द सिंगिंग टू द सॉन्ग, एवरीथिंग वाज सो वेरी परफेक्ट। 1998 मूवी का नाम दिल से चला चाहिया चाहिया चाहिया चाहिया। ए आर रहमान का बीट शुरू होता है, सुखी पाजी की आवाज आती है, स्क्रीन पर शाहरुख खान और मलाइका अरोरा मूविंग ट्रेन के ऊपर कर रहे हैं छैया छैया। बॉस 90s बॉलीवुड गेव अस प्लेंटी ऑफ iconic song visuals, है ना? You would agree with me on that. But this one, train दिखे और दिमाग में गाना automatically start हो जाता है. But here's the fantastic part, that moving train, the original plan तो वो था ही नहीं. So Farah Khan was saying in one of her interviews that the initial idea was to shoot ये छैया छैया वाला गाना ऊटी के रेलवे स्टेशन पर. SRK यानी कि हमारे 90s वाले शाहरुख खान, उनका कैरेक्टर would see this बंजारा woman स्टेशन पे, वो मिलता है उसमें, and the dancing would happen around the tracks. ठीक है, सिंपल इनफ, एक्सेप्ट दे नीडेड द स्टेशन फॉर सेवरल डेज शूटिंग के लिए। रेलवे अथॉरिटीज बेसिकली सेड, भाई स्टेशन बंद करके आपको शूटिंग करा दे, दिस इज नॉट हैपनिंग। परमिशन नहीं मिली, एंड समटाइम्स बॉलीवुड मैजिक बिगिंस विद प्लान ए कैंसिल। दैट्स व्हेन मणि रत्नम साहब जो है उन्होंने ये ऐसे, उनको याद आया दैट ही हैड प्रीवियसली शॉट एक एक्शन सीक्वेंस जो कि ट्रेन के ऊपर था, एंड देन ही सजेस्टेड दैट व्हाई डोंट वी ट्राई आउट something like this. Farah Khan ka reaction, interesting, let's try it, let's do it, and she followed it very quickly. I'm just guessing by that ki wait, moving train ke upar choreography karenge kaise waise. Here's where it gets crazier. Farah said that they didn't even get the train beforehand to rehearse on it. They got a alternate railway track between Ooty and Kunnur and a steam engine, and they climbed aboard and then they started figuring it out. शूटिंग को चार दिन लग गए छैया छैया के। थिंक अबाउट द कोरियोग्राफी फॉर अ सेकेंड, ठीक है, नॉर्मल डांस फ्लोर, नो, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ट्रेन रूफ, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, एंड डोंट गो एनी फर्दर लेफ्ट, नहीं, देयर वाज नो ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, कि

0: नाइट बिंज वॉचिंग।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indras presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Aha!
4: Suat.
3: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
5: प्रेम, निशा,
6: राहुल,
5: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
7: चलिए 90s का ना एक बाथरूम मेमोरी टेस्ट करते हैं। तैयार हो आप? रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। मैं हूँ 90s वाली यात्रा आपके साथ। आप नहाने गए, सोप डिश में लाइफ बॉय या कोई भी साबुन उसमें पड़ा हुआ है, ऊपर से परफेक्टली नॉर्मल, आप उसको कॉन्फिडेंटली उठाते हो और नीचे उंगली गई, स्क्विश। बॉस, 90s बाथरूम में सोप का एक साइड होता था, या एक साइड तो नॉर्मल होता था, दूसरा साइड हलवा होता था, बिकॉज किसी ने सोप यूज किया और वेट सोप को सीधा उस सोप डिश में ऐसे ही रख दिया जिसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी जमा हुआ था। नाउ यू कैन विजुअलाइज, करेक्ट, राइट? बस अब वो बेचारा ओवरनाइट मैरिनेट हो रहा है, सुबह तक बॉटम लेयर जो है उसकी सॉफ्ट हो जाती थी, एकदम स्लाइमी स्लाइमी जेली टाइप। एंड सबसे डेंजरस पार्ट, उसको सोप डिश से निकालना, टू मच प्रेशर, तो वो सोप ना फिसल के हाथ से निकल जाता था, आधा सोप आपके हाथ में, आधा डिश में, एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन। और बाथरूम से इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की, भाई सोप इसको किसने पानी में छोड़ा था? साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। अपेरेंटली नोबडी यूजेस सोप ऑल ऑफ अ सडन। मैंने नहीं, मैं तो अभी आया, कल भैया नहाया था, ये था वो था। पुअर सिबलिंग इजंट इवन इन द रूम एंड हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, एंड वी यूज्ड टू डू दैट सो ऑफ्टन। मम्मी का सोल्यूशन कि भाई यूज कर लो, कुछ हुआ तो नहीं है, सोप ही तो है यार, ये क्या गिलगिला पिलपिला। तुम लोग के नखरे बहुत ज्यादा होते थे, एंड बट वेस्ट नहीं कर सकते ना 90s में, कुछ भी हम वेस्ट नहीं कर सकते थे, एब्सोल्युटली नॉट। सॉफ्ट पार्ट भी यूज होगा। एक्चुअली उस वक्त सोप की लाइफ साइकिल काफी ड्रामेटिक ही थी, हम कई बार बात कर चुके हैं। ब्रांड न्यू बार, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, शार्प एजेस, लोगो क्लियरली एम्बॉस्ड है उसमें। फर्स्ट फ्यू बाथ्स के बाद एजेस राउंडेड हो जाते हैं, लोगो डिसअपीयर हो जाता है, इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल यू आर होल्डिंग दिस टाइनी स्लिपरी पीस बिटवीन द टू फिंगर्स, थिंकिंग कि इससे बॉडी वॉश कैसे कर सकते हैं। और टाइनी सोप का एक और टैलेंट, हाथ से निकला, बाथरूम के फ्लोर पे दूसरे एंड पर, उसको पिक करो, अगेन हाथ से फिसल जाए। एंड एट दिस पॉइंट आप नहा नहीं रहे हैं, आप सोप के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। एंड द सोप डिश इटसेल्फ, वो प्लास्टिक वाली, एंड देयर वर पर्टिकुलर कलर्स आल्सो, वो जो एक पाउडर ब्लू कलर की या फिर जो है येलो कलर की, नीचे टाइनी होल्स होने चाहिए ताकि वाटर ड्रेन हो जाए, बट समहाउ वाटर स्टिल मैनेज टू कलेक्ट। ओके, साइंस लिटरली गेव अप, मम्मी डिड नॉट। सोप यूज करते करके खड़ा रखो उसको, पानी निकालो, डिश साफ करो। These were the bathroom SOPs before even we knew what SOP meant actually. Dude, यार मजा ही आ गया यार। मैं सच्ची ये शो करती हूँ और मैं लिटरली उस मोमेंट में पहुंच जाती हूँ जिसको मैं खुद ही डिस्क्राइब कर रही हूँ। एंड आई होप दैट इट हैपेंस विद यू एज वेल व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मस्ती 24/7। द मैजिकल मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है यहाँ।

दिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज के स्कूल यूनिफॉर्म का एक पार्ट था जो सुबह घर से निकलते वक्त तो फुल डिसिप्लिन में होता था, बट स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसका डिसिप्लिन खत्म हो जाया करता था। क्या है बोलो बोलो, रेडियो मस्ती 24/7 आंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई सॉक्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, सॉक्स। सुबह जो है एकदम परफेक्टली रेडी किया हुआ यूनिफॉर्म, शर्ट्स टक्ड इन, बेल्ट एकदम स्ट्रेट, शूज पॉलिश्ड एंड सॉक्स प्रॉपरली पुल्ड अप, नीचे मत करना। ऑफ कोर्स, कट टू 10:30 बज गए हैं सुबह के, एक सॉक अभी भी समहाउ काफ पर सर्वाइव कर रहा है, दूसरा एंकल पे बैठा हुआ है, इट हैज रिजाइंड, एंड आप हर 15 मिनट में उसको ऊपर खींचते हैं। यू नो, जब आप स्कूल में चल रहे हो और आपका सॉक एक नीचे हो जाता है तो यू वॉक 5 steps एंड स्लोली आप उसको जो है ऊपर खींच लेते हो एंड कहते हो भाई तुझे ऊपर रहने में प्रॉब्लम क्या है। सो 90 स्कूल सॉक्स का एक इलास्टिक जो है एक पॉइंट के बाद इमोशनली गिवअप कर देता था, स्पेशली वो लॉन्ग वाइड यूनिफॉर्म के सॉक्स। न्यू पेयर परफेक्ट, ब्यूटिफुल, परफेक्ट ग्रिप रहती थी उसकी, बट कपल ऑफ मंथ्स लेटर वो ऐसा ढीला ढाला सा हो जाता है, somehow one sock was always worse, left one. Excellent employee, right वाला. Serving notice period. And now innovation यहाँ पे चालू होता था, टॉप को फोल्ड करो, डबल फोल्ड, मे बी इलास्टिक टाइटर हो जाए, नहीं पुल इट एक्स्ट्रा हाई, मे बी नीचे आते आते करेक्ट पोजिशन पे रुक जाएगा। ब्रिलियंट थियोरी बट अ वेरी मच फेल्ड एक्सपेरिमेंट। एंड देन देयर वॉज पीई का पीरियड, यू आर रनिंग एंड जंपिंग एंड प्लेइंग एंड बाय द एंड सॉक्स का यूनिफॉर्म से कोई रिश्ता ही नहीं रहा, शूज के अंदर गैदर हो जाते थे यार, हील के नीचे आ रहे हैं, आप एक कॉर्नर में खड़े होकर शू को थोड़ा सा लूज कर रहे हो, मतलब सॉक की एक्सट्रैक्शन सर्जरी चलती थी उस टाइम पे। बट द डे व्हेन सॉक्स एब्सोल्युटली हैड टू कोऑपरेट व्हिच वाज स्कूल फोटो डे, ओ बॉस, दैट मॉर्निंग एवरीथिंग वाज इंस्पेक्टेड, आपका हेयर नीटली टाइड अप, बैच स्ट्रेट होना चाहिए, शूज एक्स्ट्रा चमक रहे होने चाहिए, यूनिफॉर्म में क्रीज जो है एकदम एकदम वैसी, सॉक्स पुल देम अप। क्लास फोटो से 2 मिनट पहले टीचर, एवरीबॉडी टक इन योर शर्ट्स, टाई स्ट्रेट, सॉक्स पुल अप, एंड या एवरीबॉडी यूज्ड टू पुल इट अप बिकॉज द फोटोग्राफ वॉज परमानेंट। आपका स्माइल वियर्ड हो जाए, आईज आधी बंद हो जाए, फाइन, बट लूज सॉक्स ये तो एविडेंस फॉर एवर हो गया। अब मैं तो एक और चीज किया करती थी, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी, मैंने कहा ना 90s में कोई भी चीज जल्दी रिटायर नहीं होने देते थे, तो जब मेरे सॉक्स के ऊपर वाली जो इलास्टिक है वो ढीली हो जाती थी ना, तो उसका एक जुगाड़ ये निकालते थे हम लोग कि वो जो रबर बैंड्स होती है ना, तो रबर बैंड्स को हम लोग वो पैर में ऐसे पहन लेते थे एंड आई यूज टू टेक इट टू द टॉप एंड देन ऊपर से उसको फोल्ड कर देते। सो बेसिकली ऐसे तो इलास्टिक ढीला हो गया है, बट आई हैव पुट दिस मेकशिफ्ट इलास्टिक द रबर बैंड टू जस्ट हैंडल द होल थिंग। चलता है, दिस ट्रिक वर्क्स, यू कैन ट्राई इट, लाइक आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स दैट या आई थॉट, बट आई एम श्योर दैट यू नो इट ऑलरेडी। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event.
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
3: हाँ जी, हाँ जी, ये कसेट आज मस्ती 90s मिक्स टेप की बस यहाँ पर खत्म होने वाली है। आज का सफर लगाना कमाल का। एक पेन था जिसमें इंक पूरी थी और कॉन्फिडेंस जीरो। स्टील के ग्लास में पानी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा ठंडा हो गया। दामिनी ने याद दिलाया कि एक कास्टिंग डिसीजन कैसे सिनेमा की हिस्ट्री बदल सकता है। संदेश से आते हैं कि रिजेक्टेड धुन जो है ने इवेंचुअली पूरी जनरेशन को इमोशनल कर दिया। गद्दे धूप सेकने चले गए, फटी हुई जीन्स को रिटायरमेंट नहीं पैच मिल गया। ताल के म्यूजिक के पीछे कितनी एक्सपेरिमेंटेशन छुपी थी। और रेलवे स्टेशन का प्लान कैंसिल हुआ तो बॉलीवुड को मिल गया चल चाहिया चाहिया ऑन अ मूविंग ट्रेन। फिर बाथरूम में वो सॉगी जेली वाला सोप और स्कूल सॉक्स, सुबह असेंबली में डिसिप्लिन स्टूडेंट, लंच तक की मुझसे ना हो पाएगा। बट यू नो, आज मुझे एक थॉट ऐसा आ रहा है ये सब बातें करते हुए, 90s का बचपन, उनकी कहानियां सुनाओ तो कितनी ऑर्डिनरी सी लगती है। पेन नहीं चल रहा, सॉक्स नीचे आ रहा है, जीन्स फट गई, गद्दा धूप में पड़ा हुआ है, स्टील के ग्लास में पानी पी रहे हैं, दैट्स इट। उस वक्त किसी को क्या पता था कि डेकेड्स लेटर यही रैंडम लिटिल डिटेल्स सुनकर हम कहेंगे ओ माय गॉड यस, मेरे घर में भी हम भी यही करते थे। मे बी नॉस्टैल्जिया का मैजिक वही है। It doesn't necessarily bring back the biggest days. Sometimes it brings back a completely random Thursday afternoon. स्कूल से आए हो, बैग एक तरफ फेंका, यूनिफॉर्म चेंज की, किचन में कुछ खाने को ढूंढा, टीवी चल रहा है, कहीं से फिल्म के गाने की आवाज आ रही है, नीचे गली में फ्रेंड्स बुला रहे हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि दिस वेरी ऑर्डिनरी डे विल समडे बिकम द लाइफ यू विल misremembering. And that's why 90s Hindi cinema bhi memories ko itna tightly connect karta hai. Damini, Border, Taal, Dil Se. Titles yaad hai of course, but unke saath apni life bhi yaad hai. Gaana kahan suna tha, cassette kiski thi, film kiske saath dekhi thi, kaun sa dialogue school mein repeat kiya tha, kaun sa dance step secretly try kiya tha bathroom mein sheeshe ke saamne khade huye, cinema screen par chal raha tha aur parallel mein hum bade ho rahe the. So aaj agar koi purana 90s ka gaana randomly yu hi ab iske alawa जाए, स्किप मत कर देना, देखिए मेमोरी आपको कहां लेकर जाती है ना। यह है मस्ती 90s मिक्स टेप, आपसे लेती हूं यहां इजाजत। कैलेंडर तो 2026 में ही रहेगा बॉस, पर दिल के पास एक छोटा सा परमानेंट 90s का कॉर्नर है, उसको रेनोवेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वुड लीव यू विद दिस थॉट, बाय बाय एंड टेक केयर। और सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7, आपकी 90s वाली आंसर आपका करेगी यहीं पे इंतजार।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.
4: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
5: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा?
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
2: To raise the bar. Ramba. Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka.
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: काल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GGMart, your personal grocer.
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
4: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
5: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे
7: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
3: Stop the music, Rebo, sing it!
4: नाचने का मन है, मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
5: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. Me Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
3: Check it out.

इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे को याद के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, पियो की टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी गुम फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
5: रात अकेले है।
6: जोश में रहो।
7: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
8: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल
1: गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: आइए आइए, बड़े दिनों के बाद में आप हमारी आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर। क्यों, क्या हाल चाल है? उफ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, सीरियसली कहाँ आ गई हूँ मैं, क्योंकि इतने दिन हो गए इस कुर्सी पर बैठे अकेले आप लोगों के साथ शाम को। ओए होए होए, मजा आ रहा है, मजा, एब्सोल्युटली। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइस, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स और बिल्कुल बिल्कुल रेनुका के साथ।
0: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
2: Renuka!
1: होता है यार, हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ कुछ हो जाता है कि एक ही इंसान को लगता है कि यार मेरे 8-10 ऐसे क्लोन होने चाहिए जो कि हर जगह जा जाके काम करे। और फिर याद आता है कि AI के जमाने में क्लोन बनने बहुत ही आसान है बॉस। तो इसीलिए ऐसी बातें मत मांगो, क्योंकि एक बार जो क्लोन तुम्हारा बन गया ना, तो फिर वो कहाँ कहाँ यूज और मिसयूज हो जाएगा कि आप कहेंगे भाई इस दुनिया को एक ही ओरिजिनल ही काफी है। तो इस ओरिजिनल के साथ में आपकी शाम बिल्कुल एब्सोल्युटली अप से लेके 8 बजे तक टिके रहिए हमारे साथ में, घूमेंगे और साथ ही साथ में पूरी दुनिया से लेकर आएंगे द बेस्टेस्ट ऑफ बॉलीवुड टॉप चार्ट्स। जी हाँ, हमारे टॉप 20 गाने आज के दिन में ऑफकोर्स, और बीच बीच में चलते रहेंगे वो वाले गाने जो आपको याद दिलाएगा कि कभी वो भी सुर्खियों पे हुआ करते थे। तो करें शुरुआत, चलिए, मेरी जैसी वाइब है वैसा ही यहाँ पर आपके लिए मैं गाना लेकर आई हूँ नंबर 20। आप अच्छा जानते हो कि ये मेरी चॉइस नहीं हो सकती, राइट? चलो अलग स्टाइल अलग वाइब के साथ में शुरू करते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेनुका ऑन अ ब्यूटीफुल थर्सडे। जी हाँ, 24 तारीख है, सितंबर का महीना है और यहाँ पर 5:03 हुए हैं। लेट्स गो।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

0: vibe, ऐसे मेरी vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe. Suddenly sounds like a beautiful Thursday. जी हाँ, अगर फ्राइडे होता तो और भी मजा आता. Vibe, vibe, vibe, vibe. Vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe. किस किस के पैर और गर्दन साथ साथ में हिल रहे हैं. आई प्रॉमिस यू गाइस, ये गाने को अगर आप 5 मिनट जोर से चलाएंगे जैसे मैं चला के यहाँ पर बैठी हूँ स्टूडियो में, तो फिर सिर्फ एक ही बात होगी, आपकी गर्दन पे डेफिनेटली मोच आ जाएगी. रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका विद यू. और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाना कौन सी फिल्म का है, तो वेल लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द हाई एनर्जी टाइटल ट्रैक कुणाल खेमू के स्पाई कॉमेडी फिल्म वाइब से. जी हाँ, और बड़े सारे जो जेन जी के लोग हैं ना, वो बोलते हैं आप वाइब मत बोलो, इट इज वाइब. मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं लगता. आप दोनों बोल के बताओ मेरे को, वाइब और वाइब में क्या फर्क है? नथिंग, राइट? बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, कमिंग अप नेक्स्ट इज हमारे जमाने का एक बड़ा ही सुरीला गाना, जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड का फ्लैशबैक. सुनते साथ साथ में अभिजीत की आवाज में, ओए होए क्या गाना है. गुड इवनिंग.
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

भाई बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे भी यहाँ पर कि आप सभी के मैसेजेस आते जा रहे हैं। अरे रेणुका कितने दिन हो गए, हाय ऐसा लग रहा है कि होम कमिंग हो गई है मेरी। सच्ची बड़े प्यार से गले मिल रहे हो, अब 8 बजे तक साथ में टिके रहना, कहीं गए तो बताऊंगी घर आके।

चीजी चीजी बातें मेरे साथ करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मुझे बोल रहे हैं कि हम तो आपके दिल में रहते हैं, या कहाँ थी आप तो हमारे सपने में आ रही थी। अच्छा, मतलब ऐसा हो रहा था आप लोगों के साथ में? मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई भी मैसेज जो हमारे हॉटलाइन पे आया हो कि रेणुका जी कहाँ है, याद आ रही है उनकी? है, लिख ही देते एक बार, आज नाटक कर रहे हो सारे के सारे।

0: अंजाम के साउंडट्रैक से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज आप सुन रहे हैं। बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है 20 गाने सिलेक्ट करने जो कि मुझे आज के दिन में करने पड़ते हैं। इट्स टाइम फॉर मस्ती टॉप चार्ट्स। पिछले दो हफ्तों से समर जी ने ये कुर्सी लूट रखी थी थर्सडे शाम को। आज किसी को उनकी याद नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? प्रॉमिस।
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी।
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
0: भाई साहब, क्या गाना आने वाला है नेक्स्ट, क्या गाना आने वाला है। गाना छोड़ो, 19वें नंबर पे ये जो फिल्म है उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड वेलकम बैक गाइस। रेणुका के साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स।
5: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप।
0: देखिए, मेरा काम होता है यहाँ पर आपको एनर्जाइज करना। And therefore, I promise you, you're not going to miss a moment of that. भाई थक जाओगे, सुनते हुए थक जाओगे, तुम देखना ऐसे शरीर टूट पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उफ, किसी ने हिला दिया है आके थर्सडे शाम को। यही तो मेरा काम है। But I'm going to talk about this next गाना which is playing on number 19 and it is from the soundtrack of हनुमान अंश। जी हाँ, I don't know आप में से कितने लोगों ने इस टाइम तक हनुमान अंश देख ली है फिल्म, लेकिन नहीं देखी है तो उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। Well, this is a film which is directed by डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी, सच के डॉक्टर, ठीक है, सच के डॉक्टर जिन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया, जी हाँ, अपना MBBS छोड़ दिया और बोला मैं फिल्म मेकिंग करूंगा, क्योंकि सडनली उनके नीम करोली बाबा के साथ में कुछ ऐसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ कि उन्होंने कहा छोड़ के मैं उनकी फिल्म बनाना चाहता हूं। ऑलराइट, नाउ ये तो हुई बात। अब पैसे कहां से आएंगे? पैसे के लिए भी आप देखिए, मतलब भगवान की जो माया होती है, आप उसके बारे में सोचिए कि एक स्टूडेंट आप सोचिए जो कि UK में है, उनका नाम भी बताती हूँ, अनुप्रिया नागर की बात कर रही हूँ मैं, 21 साल की हैं, शी इज़ वन ऑफ द को प्रोड्यूसर्स एंड UK में पढ़ाई कर रही हैं, और सडनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टार्टेड रिसर्चिंग नीम करोली बाबा। क्यों? बिकॉज स्टीव जॉब्स है, या आप जानते हैं कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मतलब हर इंसान इस इन बाबा जी के पास में जाता है। अब क्यों जाता है, क्यों सारे गोरे भी जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो शी स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड देन शी वेंट टू इंडिया, एंड इंडिया जाके चतुर्वेदी जी से शी मेट डॉक्टर साहब से, और कहा कि मेरे पास जितने पैसे हैं 3 साल के मैं इस प्रोजेक्ट में डाल रही हूँ। तो बस ये फिल्म बनी 2 करोड़ रुपए में, और आप सोच सकते हैं 800%, यू हर्ड मी राइट गाइज, 800% प्रॉफिट।
6: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
0: अब बताओ इसके बारे में मैं क्या ही कहूंगी, सुनते ही गाना पहले और बातें करते रहेंगे। खैर, आज तो पैसों की बहुत बात कर रहे हैं, आपने मरा अगर फेसबुक पेज देखा तो वहां भी कुछ पैसों की ही बातें चल रही हैं। तो चलिए लगाएंगे एक दूसरे की यहाँ पर और साथ में गम करेंगे गलत। कमिंग अप गाना नंबर 19,
7: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19।

0: There's something about this gana, right? Radio Masti 24/7 पर आप सुन रहे हैं रेनुका को, and yes, this is Masti Top Charts. Masti Top Charts में ये है गाना नंबर 19. आप जानते हैं इनके जो सिंगर हैं सुनील लोधी, जो 25 साल के फोक और डिवोशनल सिंगर हैं, that is from a छोटा सा गांव बुंदेलखंड, जी हाँ, मध्य प्रदेश में. और मध्य प्रदेश के जो सिंगर हैं, इनका टोटल लाइफ चेंजिंग ब्रेक सोचिए आप. लोधी जो है परफॉर्म करते थे लोकल विलेज गैदरिंग्स में, जी चौपाल होती है ना, वहां पर, और स्ट्रगल कर रहे थे बेसिक रिकग्निशन के लिए. एक गाना, जी हाँ, ये वाला, जो कि टोटली रैग्स टू रिचेस स्टोरी है. इट टुक हिम फ्रॉम रूरल मध्य प्रदेश स्ट्रेट इनटू मुंबई रिकॉर्डिंग स्टूडियो. और रास्ते में आप सोचिए, जैसे ही टुक हिज फ्लाइट फ्रॉम भोपाल टू मुंबई, पैसेंजर्स ने उनको पहचान लिया, और पहचान करते ही कहते हैं गाना गा दो. तो मिड एयर, इन द मिडल ऑफ द फ्लाइट, He was singing, और पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो था वो झूम रहा था साथ में. How beautiful is that, right? Radio Masti 24/7 पर सुनते रहिए मेरे साथ ये वाला शो. बातें भी चलती रहेंगी और खिंचाइयां भी चलती रहेंगी साथ साथ. मैसेज भी भेजते रहिएगा मुझे. फिलहाल के लिए गाना नंबर 18 कमिंग अप नेक्स्ट.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Trending song number 18.

भाई एक बात तो पक्की है कि पिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर वापस आया और मेरे साथ साथ में आप सब भी आ गए हो, विच इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ऑल दिस इवनिंग। जी हाँ, यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि अगले थर्सडे का क्या प्लान है। तो सलमा डार्लिंग, ऐसा है कि अगले थर्सडे को है हमारी एनिवर्सरी, और हमारी एनिवर्सरी का मतलब है कि हमें मिलेगी छुट्टी, ठीक है। तो कौन काम करेगा? मैं तो नहीं करने वाली हूँ, बाकी देखती हूँ, पटा रही हूँ आजकल सबको कि कौन काम करने वाला है। फिलहाल के लिए आपको बता दें अबाउट दिस गाना which was playing just now and that was from the soundtrack of Awarapan 2. जी हाँ, Awarapan 2, ओए होए, Homecoming, क्या गाना है, इमरान हाशमी, उफ पूछो मत। लेकिन ये सब बातें भी चलती रहेंगी, फिलहाल के लिए मुझे किसी ने एक बड़ा प्यार भरा मैसेज भेजा है, दविंदर जी ने, और कह रही है ब्यूटिफुल रेणुका जी, अब कोई ब्यूटिफुल बोले तो यार कोई उनकी बात कैसे ना माने, सोचो सोचो सोचो। इसीलिए 1957 का ही गाना सही, लेकिन देवेंद्र जी सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपने आज ब्यूटीफुल कहा है यार। उफ, तब तक मैं रिलैक्स करती हूँ आपके ब्यूटीफुल को पढ़ पढ़कर। आप ये गाना बिल्कुल वी शांताराम जी का, लता मंगेशकर जी की आवाज, वसंत देसाई का म्यूजिक एंड एन अमेजिंग गाना इंडीड। बट थर्सडे शाम के लिए थोड़ा सा अलग टाइप है ना, चलो कोई ना। भाई ऐसा है कि जब हनुमान अंश का गाना सुन लिया है तो उसके बाद थोड़ा से इमोशनल तो हम सभी हो गए, और आजकल जो दुनिया में हो रहा है ना, लगता है कि ये गाना बड़ा ही मीनिंगफुल है। साथ साथ में सुने।

देविंदर जी यार सेंटी कर दिया सीरियसली। पर आप जानते हैं ये वाली बात कि ये जो लैंडमार्क 1957 की बॉलीवुड फिल्म दो आंखें भरा हाथ का ये गाना है,

0: which was directed by V. Shantaram, उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मुझे मालूम है, एंड दैट इज कि जब क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप जानते हैं कि ये गाना यूनिवर्सल सेक्युलर मैसेज लेकर जा रहा था, इतना डीपली रेजोनेट हुआ दैट इट वॉज अडॉप्टेड बाय अ पाकिस्तानी स्कूल टू बी यूज एज देयर ऑफिशियल स्कूल एंथम. जी, इतना भारी भरकम ये गाना. खैर, बढ़ते हैं आगे रेडियो मस्ती 24/7 पर. बस कुछ ही देर में सुनेंगे गाना नंबर 17. फिलहाल के लिए बॉलीवुड और डांडिया.
1: दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल बिकॉज द बेस्ट काइंड ऑफ कार्डियो कम्स विद डांडिया स्टिक्स. वी इंडस प्रेजेंट बॉलीवुड डांडिया नाइट. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Suat! Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Chhora ganda thai gaya! Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस. डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17.

भाई आज मेरे सारे सुनने वालों को स्ट्रेस हो रहा है, कह रहे हैं कि क्या हो गया जब ये भक्ति का क्या मतलब, शाम के टाइम पे तो भक्ति संगीत का कार्यक्रम क्यों शुरू कर दिया। एक्चुअली आई डोंट ब्लेम यू गाइस, फॉर सम रीजन गाना नंबर मतलब जब शुरू हुआ है 20, उसके बाद में वी हैड हनुमान अंश एंड नाउ वी हैव अ ट्रैक फ्रॉम जय जय राम रामायणा। सो नहीं क्या ही कहूँ मैं।

0: हाय साहब, जय जय राम। हाईली एंटिसिपेटेड पहला गाना नितेश तिवारी की एपिक दो पार्ट की फिल्म अडैप्टेशन ऑफ रामायण। जी हाँ, गणेश चतुर्थी पर ही इस गाने को रिलीज किया गया एंड इट हैज बीन प्रीटी मच बजी टुवर्ड्स। सारे के सारे जो फैंस हैं बड़े खुश हो गए इस बात से। आप जानते हैं, आवाजें तो आपने पहचान ही ली होंगी, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इस गाने के लिए आप सोच सकते हैं इनक्रेडिबल। हमारे जो अरिजीत सिंह हैं उन्होंने 200 टेक्स, मतलब सोचिए 200 टेक्स करके इस गाने को रिकॉर्ड किया। तो आप सोच सकते हैं कि हाउ डीपली इमोशनल ही मस्ट बी, है ना, अबाउट दिस वन। बट इट इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक। इनफैक्ट इस गाने के जो विजुअल्स है अगर आप देखेंगे, सो दैट इज अबाउट द शादी ऑफ राम और सीता। सो चैरियट का प्रोसेशन चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर और राम जो है मतलब किस तरह से दिखाए गए हैं, कमाल ही है। और आप जानते हैं कि इस दिवाली पर डेफिनेटली यही वाली फिल्म सारी दुनिया देखने वाली है। लेकिन आप सैटरडे को क्या करने वाले हैं उसके बारे में एक ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूं और वो है ये।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड्स CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
0: भाई अब ऐसा है कि दो तरह के हमारे सुनने वाले हैं, एक वो जिन्होंने टिकट्स ले ली हैं और दूसरे वो जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब टिकट्स हमको मस्ती देगा और फिर हम जाएंगे। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं मुझे जरा लिख के बताइए 9151 8963। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहती हूँ इश्क सूफियाना एक ऐसा शो है जो कि नॉट टू बी मिस्ड है। आई मीन इट, बिल्कुल नॉट टू बी मिस्ड है। क्योंकि अगर आप ये वाला शो मिस करते हैं इसका मतलब है कि आपको अपने साथ टाइम बिताना पसंद नहीं है। 2 घंटे का ये शो आपको जन्नत दिखाएगा, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। आई हैव स्टॉप गोइंग फॉर कॉन्सर्ट्स, लेकिन ये वाला एक ऐसा कॉन्सर्ट है जहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ। इट्स लाइक अपनापन, अमित धमेलिया जी के साथ में अपनापन एंड म्यूजिक को अपनाने का टाइम, बिल्कुल टोटली। अगर आपने नहीं लिया टिकट्स तो आई डू प्रॉमिस गाइस दैट यू विल एंजॉय इट। 8138279 0। और अगर हमसे टिकट्स चाहिए तो मुझे लिख के भेज दो 9151 8963। शायद मैं दे दूं। चाहिए ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 16।

0: जी बिल्कुल, यो यो हनी सिंह पूरे के पूरे ठीक ठाक होकर आ चुके हैं, शराब शरूब छोड़ छाड़ के आ चुके हैं और इस गाने में वाट लगा रहे हैं बादशाह की। आपने शायद वो लाइन सुनी होगी, व्हिच सेज क्या हुआ तेरी वोडका बिकी नहीं, मतलब कि व्हाट हैपेंड डिड योर वोडका नॉट सेल, मतलब ही इज टेकिंग अ डिग एट बादशाह कमर्शियल वेंचर, जहां पर उन्होंने शराब की इंडस्ट्री में अपना वोडका ब्रांड लॉन्च किया था और वो बिकी नहीं, वो डूब गए। तो बड़े मजे आ रहे हैं इसको कि भाई साहब अब तो मैं तो सिर्फ मतलब पैसे कमाऊंगा, मैं तो ठीक हो गया हूं, तू अपने डूबे हुए पैसों को बचा। रेडियो मस्ती 24/7 पर गिविंग यू ट्रिविया एज आई प्ले अलोंग द टॉप 20 गानर्स ऑफ दिस इवनिंग। दिस इज रेणुका विद यू, स्टे ट्यून्ड।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
2: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th to 25th September। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

और अगर आपने पहले नहीं सुना था मैं क्या कह रही थी, बुंदेलखंड। जी हाँ, ये बुंदेली फोक म्यूजिक है जो कि अपनाया गया है इस फिल्म में। एंड दिस इज अ हेल ऑफ एन अमेजिंग फिल्म जिसने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ रिटर्न हैज बीन जस्ट शॉकिंग फॉर द होल इंडस्ट्री। और इस गाने के 7 लाख, जी हाँ 700,000 से भी ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स विद इन।

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
2: Suat.
1: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
3: Alright, get your chania choli ready guys, क्योंकि आप जानते अच्छे से कि क्या होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ वी इंडस के डांडिया की। आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, इट्स ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, टिकट्स 9022-1210 पर। और आपने टिकट्स जीती भी हैं हमारे यहाँ पर, और अगर और भी जीतना चाहते हैं तो जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट 9151896 3। फिलहाल के लिए एंजॉय दिस गाना, थिंक ऑफ ऐश्वर्या राय डांसिंग ऑन ढोली तारो, कमिंग अप नेक्स्ट।

0: दस का बीस।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: हाँ तो भाई, 6 बजने के उस पार आप और हम बिल्कुल यहीं पर टिके हुए हैं और गाने भी यहीं पर टिके हुए हैं। अपने ही पड़ाव पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने गाने सुने 20, 19, 18, 17, 16, 15 और अब रहते हैं 14 गाने। कौन सा शो चल रहा है? डोंट टेल मी यू डोंट नो अबाउट दैट राइट नाउ। नहीं पता है, बताती हूँ ना।
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: आपकी डार्लिंग इस समय थोड़ी परेशान है। पूछिए क्यों परेशान है। वेल, इसलिए मैं ना पूछे ही बता देती हूँ। नॉर्मली क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं जो गिनते रहते हैं अपने पैसे जिंदगी भर की। अच्छा, अब इतने पैसे हो गए, अब हम थोड़े कंफर्टेबल हैं। नहीं नहीं, अभी तो और कमाने पड़ेंगे, अभी तो ये, अभी तो वो, मतलब सोचते सोचते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 2500 करोड़ दौलत गिर जाती है एक साल में, ठीक है, खर्च देते हैं वो, मतलब उनकी दौलत गिर गई और फिर भी वो रिचेस्ट रहते हैं पूरे पूरे भारतवर्ष में। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं ऑफ नन अदर देन द शाहरुख खान। जी हाँ, अब 10,000 करोड़, दैट इज हिज नेटवर्थ राइट नाउ, दैट्स हिज वेल्थ राइट नाउ, ओके। एंड अभी भी अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन सभी से आगे हैं। बात कर रहे हैं हम किंग खान, शाहरुख खान की। जी हाँ, और हुआ कुछ ऐसा है कि बहुत ही दुख के साथ में मुझे बताना पड़ रहा है कि उनकी जो वर्थ है ना, उनकी जो वेल्थ है, वो 2500 करोड़ एक साल में गिर गई है, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे हैं। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआ क्या कि ये जो 2500 का जो करोड़ का डिफरेंस है, वेल हिज इट्स नॉट लिमिटेड ऑब्वियसली। उनकी जो अर्निंग्स है सिर्फ फिल्मों से नहीं होती है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, या फिर कह लीजिए इनकी एसोसिएशन है विद कोलकाता नाइट राइडर्स थ्रू द नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना, ये एस्टिमेट्स हैं, और फिर ऑब्वियसली चेंजेस तो आ ही सकते हैं, क्योंकि आज प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उनकी वैल्यू थोड़ी नीचे हो गई, कल वो बढ़ गई तो फिर से अमीर हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज के दिन में 10,800 की वैल्यू लेकर बैठे हुए हैं, और मैं करोड़ लगाना बार बार भूल जाती हूँ, बट हाँ, 10,800 करोड़ की वैल्यू है। और अगर हम कंपेयर करें सेकंड रिचेस्ट एक्टर के साथ में हमारे भारतवर्ष में, तो उनकी नेटवर्थ इस समय है 4,000 करोड़। और बात कर रही हूँ मैं अमिताभ बच्चन जी की, जिन्होंने 80-85 साल की उम्र में जाकर अपनी नेटवर्थ इतनी बनाई है। और ये देखिए लड़का, जो कल का आया हुआ, जो आज के दिन में सबसे आगे पहुंचा हुआ है, वो भी उनके डबल वर्थ से भी कहीं आगे। और फिर भी मैं ये सोच रही थी कि यार, लोगों की ओवरनाइट वैल्यू 2500 करोड़ से गिरती है ना, और हमारी वैल्यू आखिर क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है ऐसा, बताओ। ये तो फेयर नहीं है ना वैसे। खैर, फेयर है या अनफेयर, फिलहाल के लिए ये वाला गाना जो आप सुन रहे हैं, ये 11 साल के बाद में 11 साल के बाद में हिमेश रेशमिया और बड़जात्या, सूरज बड़जात्या जी साथ साथ आ रहे हैं अपने हाई प्रोफाइल रीयूनियन करते हुए। और ये होगा प्रेम रतन धन पायो के बाद का ब्लॉकबस्टर। इसका नाम है ये प्रेम मोहलिया। कहाँ से लाते हैं ये नाम, मतलब कैसे चलेगी ऐसी फिल्में? आपको लगता है चलेगी? देखोगे, बताना।
4: Trending song number 14.

बाय गॉड की कसम खा रही हूँ, जब भी ये सूरज भर जाते हैं जी एक फिल्म लेकर आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी गंदी औरत हूँ इस दुनिया में जीती हुई। बिकॉज इस फिल्म में सब अच्छे लोग होते हैं, सब अच्छे लोग है ना, और बहुत अच्छे लोग होते हैं सारे के सारे, तो लगता है यार हम कितने गंदे टाइप के पीपल हैं।

0: उफ, आई एम ओनली रिमाइंडेड ऑफ सलमान खान एंड मोनीश बहल एंड नीलम. मुझे ऐसे ऐसे सामने विजुअल आ रहे हैं. पता नहीं देखोगे कि नहीं, मुझे मेरा पक्का पता नहीं है. गुड इवनिंग एवरीवन.
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था.
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं.
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था.
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी.
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो. जिनकी शेर सवारी है.
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
5: Trending song number 13.

भाई गाना तो सुनने वाले बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये वाला गाना है, बड़ा ही सोलफुल सा इंडी पॉप हिंदी ट्रैक बाय सिंगर सॉन्गराइटर आदित्य रिखारी। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुआ है ये गाना एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर सिंगल फ्रॉम हिज हाईली एंटिसिपेटेड एल्बम विच इज कॉल्ड बिटवीन डिस्टेंसेज। अब हमारे डिस्टेंस की कुछ बात हो जाए, रेडियो मसी 24/7 पर सही जगह पहुंचे। सर सही जगह है ये बिल्कुल, कौन है? रेणुका है ना, और कौन हो सकता है यहाँ पर भाई। अगर थर्सडे शाम है तो मैंने क्या किया इस बार कि समर जी को धक्का मार ही दिया। मैंने कहा बस बहुत हो गया, दो हफ्ते से आप मेरी ना कुर्सी लेके बैठे हो, हर बार कह देते हो आज इसका बर्थडे आज उसका बर्थडे है, मुझे शो करने दो। अरे भैया क्या बात है, मतलब आपको शो का टाइम मिलता है ना फ्राइडे सैटरडे संडे, आप वहीं पर रहा करो। लेकिन थर्सडे शाम को उनको शौक चढ़ाया, अब शौक का क्या करें भाई, बड़े बूढ़ों की बातें सुननी पड़ती हैं। बट ऑन रेडियो मसी 24/7 यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, और डिस्टेंस को दूर करने के लिए आ गई है मेरी रुचिका डार्लिंग। और रुचिका डार्लिंग यहाँ पर मेरे को लिख रही है, हेलो सोनियो आ गए वापस। हाँ बिल्कुल आ गई, मतलब बहुत बहुत ज्यादा वेलकम मिला आज तो मुझे यहाँ पर हर किसी से मिला है। और साथ ही में ये भी कह रही हैं कि आई जस्ट ट्यून्ड इन, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही अभी तक, सिर्फ गाने चल रहे हैं क्या? उफ, शक का इलाज कुछ नहीं हो सकता। अगला गाना जरूर हो सकता है, लेकिन अगला गाना जो नंबर 12 पर है वो सुनाने से पहले जी बिल्कुल सही पहचाना, आंखों से हमने कुछ नहीं कहा, ये गाना नंबर 12 है। और सही पहचान रहे हो आप, ये आंखों से तूने 2.0 है जिसमें कि डिक यही चलता रहेगा बस। उफ, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने क्योंकि सोचा रुचिका जी बहुत टाइम के बाद में मुझे मिल रही हैं, तो उनकी पसंद का एक गाना हो जाए क्या, और आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों को पसंद आएगा बिकॉज दिस इज द 90s का गाना। कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं टॉप चार्ट से और बढ़ते हैं मधोश दिल की तरफ।

मतलब यहाँ पे कमेंट्स देखिए, कहा जा रहा है मुझे कि हमारे साथ रहते रहते आपका भी टेस्ट अच्छा हो गया। अच्छा सलमा, एक बात सुनो, ये गाना ना बेटा मैं तब से सुन रही हूँ जब से तुम्हें तुमने होश संभाले होंगे, समझे हो तुम। एंड दैट्स नॉट बिकॉज मैं तुमसे बड़ी हूँ, इट इज ओनली बिकॉज मेरा टेस्ट तुमसे भी बहुत पहले से अच्छा वाला है। पूछ लो रुचिका से, ये रुचिका और मेरा गाना कितना पुराना है, बिल्कुल आपस का। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट लव दिस गाना, थिंक अबाउट इट। कुमार सानू, लता मंगेशकर, 1998 की ये मूवी, विच इज जब प्यार किसी से होता है, हमें तो रोज रोज होता है।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: भैया साहब, जब मस्ती किसी पार्टनर करती है ना इवेंट के साथ में, तो आपको कोई भी शक नहीं रहना चाहिए दैट दैट इवेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द इवेंट दैट यू नीड टू बी एट। यस, रेडियो मस्ती 24/7 पर। चलिए अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर आगे और मैं आपको बताऊंगी कि बैकस्टेज सिब्लिंग्स, जी आपने देखा होगा आरजे अंतरा के साथ में इनका जो एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्वर्सेशन हुआ था मस्ती एवीआई पर लास्ट वीक पर। वेल, दे वेरी वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल, वेरी अमेजिंग सेट ऑफ सिब्लिंग्स। और आप मान सकते हैं कि जिनके मम्मी डैडी ने उनको बचपन से भजन वजन सिखाया अच्छे से कि भैया सुबह उठो और भजन गाओ, मतलब जेन जी, और वो काम करते हुए मम्मी डैडी की बातें मानते हुए दे जस्ट डिसाइडेड टू गिव अप ऑन देयर प्रोफेशंस एंड अडैप्ट That lifestyle forever। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े शरीफ से बच्चे से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो काफी बदमाश हैं।

0: And that is what you will get. This music, and this is called Backstage Siblings. Aap tickets le sakte hain Sistik se. They are $60 only. And of course, you can go in and get your tickets and be a part of this amazing evening, which is Backstage Siblings. अब इसके साथ में भाई अगली बात करने से पहले मैं गाना नंबर 12 सुनाई ही दूं, क्योंकि यहां पर लोगों को इंतजार है. वापस आके और बातें करने वाली हूं मैं आपसे. जाना मत कहीं पर. 6:24 हो रहे हैं.
1: Trending song number 12.

0: द फनी थिंग इस गाने का नाम है आंखों से तूने, एंड तूने इज स्पेल्ड एज टी यू एन ई, एंड फिर लिखा है 2.0. तो मैं तब से सोच रही हूँ आंखों से ट्यून 2.0, आंखों से ट्यून 2.0. तब मैं बाद में समझ आया आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये एक्चुअली वो है. बट यू नो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर तूने इंग्लिश में कैसे लिखे, ट्यून भी तो लिख ही सकते हैं ना.
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: ऐसा है कि आपकी डार्लिंग कुछ दिन पहले यूएस में थी, ऑल राइट. और जब मैं यूएस में थी तो मेरे से पूछा जा रहा कहां गए थे, क्या किया था. तो मैं सिर्फ सीधी सी बात करती हूँ, व्हेन एवर आई नीड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आई स्टार्ट फीलिंग, मुझे तो बुखार ही चढ़ जाता है. और वाकई इस बार जाने से पहले एक दिन चढ़ गया था, ठीक है. और वो बुखार रहा क्योंकि 18 घंटे की फ्लाइट, उसके आगे फिर से 6 घंटे की फ्लाइट. मैं तो मतलब मुझे लगा क्या हो गया भाई, ये कितनी बड़ी दुनिया है, क्या बात है, मतलब पहुंच क्यों नहीं रहे हम. और ऊपर से वापस आते टाइम जब मैंने किया स्क्रीन अपने सामने,

0: वहां पर दिखाई दिया कि भाई हम कहाँ उड़ रहे हैं, तो एक तरफ तेहरान था दूसरी तरफ बगदाद था, तो वैसे ही मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा यार व्हाई डिड आई हैव टू स्विच ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम जब हम यहाँ पर उड़ रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 बट दिस इज रेडियो कम विद यू गाइस एंड इट्स अबाउट 6:29 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। हाँ तो भाई जब भी कोई मेरे से पूछता है कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, तो मैं कहूंगी वेरी नाइस एंड वेरी बैड, बिकॉज जब सारे के सारे गोरे लोग भारत जाते हैं तो वो मांगते हैं हार्डशिप अलाउंस। ठीक है, हार्डशिप अलाउंस तब दी जाती है जब वाकई आप हार्डशिप फेस कर रहे हो। अब भैया भारत में तुम जाते हो एक्सपैट के जैसे, और वहां पर जाते ही तुमको मिल जाता है ड्राइवर, दो तीन काम करने वाले लोग घर के अंदर, बाहर गार्ड मिल जाता है, बड़े घर मिल जाते हैं, किस बात की हार्डशिप है पीओडी तुम्हारी है। लेकिन हमें यूएस जाने के लिए हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्टेंस, दरवाजे से बाहर निकलो तो दूर दूर तक, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। ठीक है, अगर एक कुत्ता दिख जाए कभी, जो कि दिखता नहीं सड़क पे, अगर दिख जाए तो इंसान बोलता ओए कुत्ता दिखा, मतलब है यहाँ कोई रहता है, यहाँ तो मतलब बहुत पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आपको शॉपिंग जाना है तो आपके पाँव दुख के साइड पर पड़ जाएंगे क्योंकि शॉप्स ही नहीं खत्म हो रही। अगर आप ओके आई एम नॉट गोइंग टू क्रिब एनीमोर, ओवरऑल आई सॉ अ फैंटास्टिक कॉन्सर्ट ऑल्सो इन न्यूयॉर्क सिटी एंड आई मस्ट टेल यू द वाइब ऑफ द कॉन्सर्ट, ओए होए 20,000 लोग पूरे टाइम, चाहे उन्हें कुर्सी के पैसे दिए थे लेकिन बैठ के नहीं देखा उन्होंने कॉन्सर्ट, वो खड़े रहे। ये हैरी स्टाइल्स का कॉन्सर्ट था एंड आई टेल यू आई फेल इन लव विद द गाय एज वेल। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, ये तो बातें हुई मेरे यूएस ट्रिप की, और अगर कोई और आपके पास सवाल है तो बिल्कुल मुझे लिख दीजिए, मैं बिल्कुल हैप्पीली आंसर करूंगी, क्योंकि जेट लैग डू ना, इसीलिए वैसे भी मुझे टाइम तो पास करना ही है। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, सपना जी जो हमारी लिसनर है वो इस वीकेंड पर बहुत ज्यादा बिजी है। फिलहाल आप सुन लीजिए कहां बिजी है, वापस आके बताऊंगी कि वो वहां पर क्या क्या करने वाली है।
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: It's time for...
3: Musty Song of the Hour.
2: Song of the Hour.

दिस इज वन गाना जो मैं चाहती हूँ कि आप जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय गाइज. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. विकी डोनर के साउंड ट्रैक से विशाल ददलानी, सुनिधि चौहान की आवाज़, एंड दिस इज मर जाया. लवली सॉन्ग.

0: यार वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना लगता है कि यार मर ही जाएंगे हम, है ना भाई। रेडियो मसी 24/7 पर अगर आपको लगता है कि आप भी हमारे बिना नहीं जी सकते तो हमें एक मैसेज भेजिए ना 9151896 3 पर। अभी भेज दो यार, मतलब बाद में जब मैं जाने लगूंगी 8 बजे तो सबके मैसेज आने लग जाएंगे। हाँ नहीं तो they are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20. You know what's the amazing part about this gana? It is so beautiful aur isko sirf aur sirf ek raat mein likha gaya tha. Can you believe it? जी बिल्कुल, पर्सनल इमोशंस किसके, बन चक्रवर्ती के। तो ये जो कंपोजर है ना, इनको बड़े टाइम से कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था और मतलब रियल लाइफ हार्ट ब्रेक भी हो रखा था, तो इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो जो डायरेक्टर है शुजीत सरकार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीन बनाया ठीक है, और बड़ा ही पेनफुल सेपरेशन की बात करी लवर्स के बीच में, और फिर उसके बाद कहा जा अब तू जाग पूरी रात और तू कुछ करके दिखा ठीक है। ये बंदा गया, इसने ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई कि ये गाना मेरे तक पहुंच गया, और जब मेरे तक पहुंच गया तो आपको पता ही है कि फिर आप तक भी पहुंच जाएगा, और भाई कमाल ही हो गया। रेडियो मसी 24/7 पर ब्यूटीफुल ट्रैक जस्ट नाउ फ्रॉम विकी डोनर आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अप नेक्स्ट इज क्या गाना आने वाला है, कौन सा आने वाला है नंबर 11 पर। That's another track from Avarapan 2. How beautiful. And gaana with us also this hour aap sunenge, aur wo gaana hai ye wala. जब हम तूने TUNE लिखते हैं तो टुनु टुनु कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, बताइए मुझे जरा। रेडियो मस्ती 24/7 अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 11।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: GGMart योर पर्सनल ग्रोसर।
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

में बड़े ही दुखी आ रहे लोग मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिम के लिए गाना चला दो। भैया मैं क्या करूं, गाना नंबर अगर 11 यही है तो यही है ना। मतलब थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने ये बोला ओरिजिनली चला देते हो, तो बहन मैंने थोड़े ना नया रिलीज करा है 2.0 है। अब 2.0 ही अगर आया है टॉप चार्ट्स में तो मैं पुराना कैसे चला देती। मतलब हेलो, टॉप चार्ट्स का आप मतलब समझते हैं ना, कि मतलब जो लेटेस्ट वाले गाने हैं सिर्फ वही चलते हैं उसमें, और बीच बीच में मेरी मर्जी के है ना, कभी कभी आपकी भी। अब देखिए ना, यहाँ पर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर का जो डिमांड आया है, मैं सोच रही हूँ चलाऊं या ना चलाऊं, आपका क्या मूड है, चलाऊं क्या?

0: आपको बताया, इंसान बड़ी ही अजीब सी फ्लेक्सिबल चीज़ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत चूँचू करते हैं कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, चेंज नहीं करना, नहीं करना, लेकिन फिर थोड़े दिनों में ना हम खुद ही अप्रिशिएट करने लग जाते हैं जो भी हमारी ज़िंदगी में चेंजेस होते हैं, है ना। क्या करे, इंसान बड़ा ही फ्लेक्सिबल किस्म का इंसान है। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस राइट नाउ फिलोसॉफिकल नहीं हो रहा है, मैं बताने वाली हूँ कि किसी ने यहाँ पर मुझे एक मैसेज लिखा है, वो कह रही है बहुत ही भसड़ वाली जिंदगी हो रखी है, मतलब आज के दिन बहुत ही गंदा वाला दिन बीता है, तो प्लीज कोई ऐसा गाना चला दो जिससे कि एनर्जी आ जाए। अब क्या है कि रूल के हिसाब से ये वाला गाना होना नहीं चाहिए टॉप चार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको गाना नंबर 10 ऑलरेडी बता दिया। लेकिन क्योंकि रूल बुक को हम टोटली अवॉइड कर देते हैं जब हमारा कोई खास इंसान हमसे कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो बिल्कुल मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर, आरजे अंतरा आ जाओ, तुम्हारे लिए भसड़ वाला दिन क्यों हो रखा तुम्हारा, ये तो बताओ हमें।
1: Musty Song of the Hour.

0: Oi, oi, all of you in the gym, guys. Right now, this is Radio Masti 24/7 and absolutely live from the studios is Renuka. Masti top charts sun rahe aap. Ye gana bilkul top charts mein nahi hai, lekin ye un logon ke liye jo bilkul dull hue pade aaj ke din mein. Hil jao, hil jao, hil hi jao. Well done. All right. अब जब तक आप थोड़ा सा अपना पसीना सुखाते हैं, हम आपको बताते हैं कि भाई हमारे माउंट बैटन सीसी में जो होने जा रहा है, विच इज ऑन संडे. आप जानते हैं संडे पूरे दिन आप वहां पर आ जाओ, ठीक है, माउंट बैटन सीसी में स्टॉल ही स्टॉल है. और मुझे तो ये पता लगा है कि ओवर रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि बच्चे बूढ़े और जवान सारे के सारे पहुंच रहे हैं वहां पर सुबह से लेकर शाम तक. और मतलब एंटरटेनमेंट है और स्टॉल्स हैं और खाने पीने का सामान है और मजे ही मजे हैं. बच्चों के लिए तो कूदने की भी जगह है, मतलब वो जो होते हैं ना बड़े बड़े जो टॉयज लगा देते हैं, क्या कहते हैं यार उनको, बलून वाले जो टॉयज होते हैं जिनके अंदर हवा भर के बच्चे कूदते रहते हैं, सो वो सब भी हो रहा है वहां पर. तो आ जाइए, इट्स लाइक अ फैमिली डे आउट, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. और हमारी जो सपना जी हैं, सबसे बड़ी बात है, उनका एक स्टॉल है वहां पर जिसके लिए हम सब बिल्कुल वहां पर पहुंचेंगे और टेस्ट करेंगे उनकी बर्फी, मुरुकू, कुकीज जो रखने वाली हैं और साथ में हैंडमेड एनवेलप्स भी. और वो कह रही हैं सब कुछ फ्री ले जाओ. ये उन्होंने कहा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है. बट ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, वी वांट टू सपोर्ट ईच एंड एवरी इनिशिएटिव एंड कम्युनिटी का तो मतलब हमारा कुछ ज्यादा ही लगाव है, राइट? सो बी देयर गाइस ऑन माउंट बैटन सीसी. जी हाँ, बिल्कुल संडे 27 सितंबर को सुबह से लेकर शाम तक आ जाना, बहुत मजे करेंगे. मैं वहीं मिलूंगी.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10.
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम? नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: पगला दूंगा पूरे देश को।
1: भाई रवि किशन जी की तो मतलब बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पर इस समय बात एक और होने वाली है, विच इज एक सहारा। जी हाँ, पहली एनिवर्सरी एक सहारा की। कौन है ये आखिर, बताएं आपको? एक सहारा, विच इज मोर देन अ नेम, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ यूनिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्यार। और एक सहारा की पहली एनिवर्सरी, जी हाँ, 26 सितंबर को, इसी सैटरडे को 6 बजे शाम के खालसा क्लब 4th फ्लोर फंक्शन हॉल में होने जा रही है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि टिकट सिर्फ $5 है, जिसके अंदर फर्स्ट लकी ड्रॉ प्राइज है 916 गोल्ड कॉइन। साथ ही में बाकी के भी लकी ड्रॉ प्राइजेस हैं, कैश प्राइजेस हैं, शॉपिंग वाउचर्स हैं, डोर गिफ्ट्स हैं, गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वेज और नॉन वेज 10 कोर्स का खाना है गायत्री रेस्टोरेंट से। और साथ ही साथ में पहली एनिवर्सरी का केक भी है। आप रिजर्व कर सकते हैं अपनी टिकट्स ऑफकोर्स राइट नाउ बाय कॉलिंग 9002-9958। माया को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9002-9958। $5 की ये टिकट है एंड ऑफकोर्स उसमें लकी ड्रॉ भी इंक्लूडेड है। तो बस एक सहारा ऑन द 26th of September 6 बजे शाम को खालसा क्लब में। सुने अगला गाना, ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट, गाना नंबर 9।
2: Trending song number 9.

एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वंडरिंग कि ये गाना कहाँ से आ गया, यहाँ पर आई वांट टू टेल यू कि आज की प्लेलिस्ट जो है ना, क्योंकि मैं दो हफ्ते से जरा यहाँ पर नहीं आई थी टॉप चार्ट्स के लिए, तो ये सब ना बदल के इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया, कुछ ऐसे गाने डाल दिए जो मुझे लग रहा है मेरे से पर्सनल दुश्मनी मेरे से ही नहीं सिर्फ आपसे भी निकालने के लिए डाले हैं. सो दिस इज मधोष फ्रॉम द ट्रैक ऑफ टॉक्सिक. मुझे नहीं लगता दिस गाना विल रिमेन ऑन माई लिस्ट नेक्स्ट वीक, आई प्रोमिस यू दैट ऑलमोस्ट.

वाकई सारा हफ्ता जान निकाल ले अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन, साथ ही में आप सुन रहे अमित त्रिवेदी ही की आवाज अलोंग विद आदित्य जैन और अक्षय धवन. दिस इज फ्रॉम द एल्बम वाइब. बोला था ना जैन जी कैसे बोलता है, वाइब वाइब. आप जरा ट्राई करो बोलना ठीक से, वाइब.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: और आपको जोश में रखने के लिए 5 बजे से यहाँ पर रेणुका आई हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम आई हैव टू से। और बार बार मेरे से पूछा जा रहा है कि अगले थर्सडे का क्या प्लान है। बहन, मुझे आज का प्लान नहीं समझ में आ रहा, मैं अगले थर्सडे की क्या बात करूंगी? सोचो तो सही एक मिनट के लिए। मुझे चलो, लेट मी गेट अ लिटिल फिलोसॉफिकल। इंसान को अगले पल का नहीं पता। हम और तुम कौन होते हैं सलमा बेगम, अगले हफ्ते की बात करने के लिए।
0: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: और मैं एक और भी बात कहना चाहूंगी। आज के दिन में बड़े सारे लोगों ने मेरे को ये बोला है कि भाई साहब, क्या बात है, आज ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम क्यों चल रहा है यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर, वो भी थर्सडे शाम को। ओढ़े हुए है चादर टॉप चार्ट्स की और चल रहा है बीच में भक्ति संगीत। हाँ तो भाई, पहले घंटे में बहुत सारा भक्ति संगीत हुआ, ये मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तो मैंने पूरा फोकस करके यहाँ पर हाथ जोड़ के कहा कि भाई आज का मेरा शो अच्छे से हो जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भक्ति संगीत आना थोड़ा हुआ कम, लेकिन आप जानते हैं कि क्या साजिश थी मेरे साथ में आज के, कि भाई हनुमान अंश का जो पार्वती गाना है वो नंबर एक पर डाला गया था, नंबर एक। मैंने आके सवाल पूछे 1, 2, 3, 4 की, भाई किसका दिल इतना भारी हुआ पड़ा है कि आज के दिन में नंबर एक पर पार्वती जी का मतलब गाना डाला गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया बहन? तो फिर मेरे को कोई जवाब ना दे पाया। एंड फाइनली I said, okay, now I am taking over. And yes, ladies and gentlemen, I have taken over the Musti Top Charts and I am delighted to bring to you Gana number 7.
2: Tum kya ho, kaise kahun, tum subh ho ki shaam.
1: Hai, kya gana hai vise, Tabassum, Batwara 1947 ka ye gana, oye hoye, oye hoye.
2: Tum rango mein khushbuo mein dhali hoon.
1: सारा गाना सुन लो ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही सुन लो सारा गाना, तुम बाद में मत सुनना। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, राइट नाउ आई गॉट टेल यू दैट मेरे स्टूडियो में ना छोटे छोटे कुछ मच्छर हो रहे हैं। तो आज मैनेजमेंट वालों को मैंने कहा, मैं क्या बात है भाई, ये मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्यों हो रहे हैं ये? उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा जो साथ में ऑफिस है ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, दैट डजंट मेक थिंग्स राइट ना, कि अगर उनके ज़्यादा है मेरे कम है तो मैं क्या खुश हूँ इस बात से? कहाँ से आ रहे हैं ये मच्छर? तो कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है। आप मुझे कुछ एडवाइस दे पाएंगे तो जरूर बताएगा। 9151896 दैट्स अ टेलीफोन नंबर, सेंड मी अ टेक्स्ट गाइस। ये छोटे छोटे छोटे छोटे मच्छर, मतलब दो चार ही हैं, बट दे इरिटेटिंग द हेल आउट ऑफ मी राइट नाउ।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 7।

0: जानते हैं कि तबस्सुम का क्या मतलब होता है? It means smile or happiness. How amazing is that, right? Radio Masti 24/7 पर आप जो भी गाना सुन रहे थे उसका भी एक बड़ा ही खास कहानी है. You know, this song is actually marked the major reunion of दो maestros. जी हाँ, composed, produced and arranged by Oscar winner A.R. Rahman. और साथ ही में जो lyrics हैं वो लिखे हैं हमारे legendary जावेद अख्तर साहब ने. तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों को जब साथ में मिलाया जाए और साथ में प्लेबैक सिंगर हमारे सोनू निगम आ जाए तो what happened on सोशल मीडिया, राइट? A.R. Rahman ने इमीडिएटली इस गाने के रिकॉर्डिंग के बाद में लिखा सोनू निगम को ओपनली, ब्रो हाउ कैन यू साउंड सो रोमांटिक, एंड एक्चुअली ही साउंड्स एब्सोल्युटली रोमांटिक, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर 7:10 हो रहे हैं और रेडियो मसी 24/7 पर मैं हूँ आपके साथ पूरे 8 बजे तक.
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था.
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं.
1: प्रवेश वर्जित है उसकी चौखट पर यही लिखा था.
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी.
2: वॉच सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
4: हमारी रक्षक है वो जिनकी शेर सवारी है.
2: ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 25th सितंबर एट द सिनेमास नियर यू.
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6.

आई कैन नॉट इमेजिन कि हम एकदम से सब्जी मार्केट पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 7:11 पर आपको आलू कांदा लेना है तो यही है सही जगह। दिस इज मस्ती मीडिया 24/7 एब्सोल्युटली लाइव इज रेणुका विद यू। और जिम के जो लोग पिछले गाने में सो गए थे, लेट गए थे ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके, वो अब उठ के काम अपना दोबारा से शुरू कर सकते हैं।

गाइस और वेलकम। जी हाँ, कि मैं आज इतना बढ़िया शो यहाँ पर कर रही हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक और चीज के लिए वेलकम करना चाहूंगी आपको अगले हफ्ते। मैं ये सोच रही हूँ कि भाई इतने टाइम से हमने कुछ नया नहीं किया है ना, भाई किया तो नहीं है नया, तो क्यों ना हम वो बात बता दें आपको जो हम करने में लगे हुए हैं। एक हमारा खास नया पॉडकास्ट शुरू हो रहा है, जी हाँ, विच इज कॉल्ड बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका, और उसका आप रिवील देख सकते हैं 1 अक्टूबर को। आफ्टर ऑल 1 अक्टूबर हमारे लिए आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों का इतना प्यार 1 अक्टूबर को हमें 10 साल पहले मिला था, और आपकी डेफिनेटली ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से आज तक हम यहाँ पर टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। जी हाँ, तो बस 1 अक्टूबर को आप देखेंगे ये जो नया हमारा पॉडकास्ट है उसका एक छोटा सा झलक, और फिर उसके बाद हर थर्सडे को फॉलोइंग 1 अक्टूबर आप एपिसोड्स नए देख पाएंगे। तो आई होप आप हमारे साथ जुड़ेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल स्टोरीज ऑफ रियल पीपल, जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिंदगी में एक ना एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट को लात मार के उन्होंने प्रूव किया है दैट दे आर बिगर देन एनी प्रॉब्लम एंड दे आर अबव इट ऑल। मतलब बड़ा अच्छा लगता है ऐसी इंस्पायरिंग वाले लोगों से मिलकर यार, बड़ी हिम्मत आ जाती है, और आई एम श्योर आप भी एंजॉय करेंगे उनके रियल स्टोरीज, एंड ऑफकोर्स आई विल लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ऑल्सो। ऑलराइट, सो जरूर देखिएगा बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका स्टार्टिंग 1 अक्टूबर, एंड एवरी थर्सडे देर विल बी अ न्यू एपिसोड। देखना, और मुझे जरा कॉन्ग्रेचुलेट भी कर ही देना इस बात पे, ठीक है ना। अगला गाना कमिंग अप टू मेक यू रिलैक्स ऑन द ट्रेडमिल yet again. Yeah! Bollywood Flashback.

यार ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन करता है हमेशा अच्छे अच्छे गाने सुनने का, और हम सुनते भी हैं, लेकिन जब एन वक्त पे गाना याद करना होता है तो भूल जाते हैं सारे के सारे अच्छे गाने। इसलिए आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, यार बीच में फिलर के लिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, अच्छा सा बताइए जरा यहाँ पर।

0: हुए, मतलब इस गाने को सुन के ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा रोमांटिक कोई इंसान हो सकता है? कोई इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है? ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहा होगा हमें पता है बीवी के लिए कोई ऐसी बातें नहीं बोलता, हम सब जानते हैं ना।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, बीवियों के लिए तो ये बोला जाता है, अब छोड़ मेरी जान, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू। जी हां, बड़े दिन हो गए आप लोगों को शाम को मिले हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि उफ, मतलब अब तो आज दिल भर के बातें करी जाए। तो मेरे को बुराई करनी है अगली वाली, वो है राधिका आप्टे की। ठीक है, लड़की करती भी सब कुछ है, उसको अटेंशन भी पूरी चाहिए और फिर ना छुई मुई बनने की कोशिश भी पूरी करती है। मतलब सीरियसली, दिस इज लाइक मोहल्ले वाली आंटी टॉकिंग अबाउट द डॉटर ऑफ द पड़ोसी। ओके, दैट इज हाउ आई एम टॉकिंग राइट नाउ। सो राधिका आप्टे क्या हुआ कि रिसेंटली कहती है, हाय राम, मेरा ना इंटीमेट सीन लीक हो गया मेरी एक फिल्म से और फिर ना मेरे वॉचमैन ने भी देख लिया, मैं तो 4 दिन घर से बाहर नहीं निकली। एक मिनट, इसमें मेरे पास ना बहुत सारे सवाल है। पहली बात ये, इंटीमेट सीन तुमने किया, अपनी मर्जी से किया, तुम्हें पता था इंटीमेट सीन करना है, ठीक है। लस्ट स्टोरीज 3 जैसी फिल्म में जब तुम आओगी, उसके नाम क्या है, लस्ट। हमने पहले 2 सीजन देखे हैं, हमें पता है उसमें क्या होता है और तुम्हें भी पता ही होगा बहन, है ना। तो तुम जब उसमें आई तो तुम्हें पता था इंटीमेट सीन होंगे, इंटीमेट सीन होंगे तो बाहर जाके देखेंगे भी, और देखेंगे तो उसमें वॉचमैन भी देखेगा, आफ्टर ऑल वॉचमैन के पास भी नेटफ्लिक्स होगा, उसके पास भी सब कुछ होगा, है ना। तो देखा उसने भी, तो तुम बहन किस बात पे शर्माती हो, सकुचाती हो, क्योंकि तुमने तो अपनी मर्जी से किया है वो सब कुछ। ओह माय गॉड, शी वेंट ऑन टू से कि भाई मैंने ना जो ऐसा किया वो लीक हो गया, लिटरली मैं तो घर से बाहर ही निकल पाई 4 दिन। प्रॉब्लम इज कि मैं ना कि वो इतनी जल्दी घर आ गया, डोरबेल बज सकती है, तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा हो सकता है अगर वो ऑफेंडेड फील करे। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं ना ओके कहती है, माय स्टाइलिस्ट वाज टेलिंग मी कि जो उसका ड्राइवर है ना, वो ना उस क्लिप को देखता ही रहा और कहने लगा कि आप उनके घर नहीं जा रहे हो। मतलब सीरियसली राधिका आप्टे, मैंने भी देखी है लव स्टोरीज, ठीक है, और मुझे ज़रा इंटरेस्ट नहीं आया तुम्हारे वो सारे सीन्स में, लेट मी टेल यू दैट। फिलहाल के लिए अगला गाना यहाँ पर है, गाना नंबर 5।

तुम्हारे गाना स्पेशली आदित्य तुम्हारे लिए। आई नो यू लव दिस गाना एंड यू ऑलवेज वांट टू सी इट ऑन टॉप नंबर वन, लेकिन हमेशा तो हमारे पास वही चीज नहीं होती ना यार जिंदगी में, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आएगा, वापस आएगा नंबर वन पर, आई प्रोमिस यू।

0: मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान अगर ये गाना अपने लिए किसी और को गाते हुए सुने तो वो मतलब वो शर्माएगा नहीं, या वो इमोशनल नहीं हो जाएगा, या वो बोलेगा छोड़ यार सारी दुनिया गई भाड़ में, ये मेरे लिए गाना तो गा रहा है। आपको पता है हाल ही में मेरी एक फ्रेंड, बाय द वे, उसका डिवोर्स हुआ और उसको मतलब काफ़ी साल से परेशान थी वो, ठीक है। तो उसमें उसने जब डिवोर्स किया अपने हस्बैंड को, उसने कहा अब मेरी जान छूट गई, तो उसने जाकर एक डेटिंग ऐप को ज्वाइन कर लिया भाई, कि ठीक है वाई नॉट। डेटिंग ऐप को ज्वाइन किया तो वहाँ पर एक बंदा भी उसको मिल गया बहुत जल्दी से, जो कि उसके प्रीटी मच बराबर का एज एंड यू नो व्हाटएवर सब कुछ। तो वो बंदा उसके लिए शेर व शायरी लिख रहा, रोज़ लिख रहा उसके लिए शेर व शायरी। बंदी बिल्कुल सेंटी हो रही, कह रही है मैं 20-25 साल, मेरी शादी हुई थी और मैं इस शादी में रही थी 20-25 साल और मैं इतनी पक गई थी उस आदमी से कि अब और कुछ हो ना हो एटलीस्ट ये आदमी मेरे लिए शेर व शायरी तो लिखता है। प्यार का भूखा होता है इंसान सर, प्यार का भूखा होता है सिर्फ।
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network, Singapore. Check it out.
0: आज तो मेरे मतलब मुंह से सिर्फ और सिर्फ पर्ल्स ऑफ एक्सपीरियंस और विजडम निकल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी अभी जब हम बात कर रहे थे राधिका आप्टे की, तो सबको यही लगा कि ये राधिका आप्टे प्लीज कौन है, ये क्यों हम इतना इसको भाव दे रहे हैं, कौन देख रहा है इसके लस्ट भरे सीन और किसको फर्क पड़ रहा है सीरियसली। तो हमारे कुछ सुनने वालों का ये कहना है कि भाई आजकल ऐसी फिल्मों को देख के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर है। तो चलिए आप ही लिख दीजिए किताब, मतलब व्हाई नॉट। और कुछ लोगों का ये कहना है कि छोड़ यार इसकी शक्ल को, रहने देना, हु इज इंटरेस्टेड एनीवे। सो विद दैट, प्रतीक गांधी की बात मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि क्या है कि जब हाल ही में कटरीना कैफ बाहर निकली थी अपने हस्बैंड के साथ में, एंड दिस इज पोस्टमार्टम राइट, सो शी इज पुट ऑन सम वेट एंड ऑल दैट, एंड आपको पता है कि पीपल हैव दिस सर्टन वे ऑफ लुकिंग एट वुमन, एंड वो कहते हैं कि भाई ये तो हीरोइन है, इसको मोटे होने का क्या हक बनता है, इसको तो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसे ये 10 साल पहले थी। यार मतलब शी इज एंजॉइंग मदरहुड, लीव हर अलोन। लेकिन कुछ लोग उनके लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा कटरीना कैफ को, इंक्लूडिंग सलमान खान। ही सर मैं अपनी शर्ट उतार देता हूं, मेरे को कमेंट करो। भाई तेरे को कमेंट करने का किसको इंटरेस्ट है, बट एनीवे ही ट्राइड। वो वैसे भी बात बात पर शर्ट उतारना का ही जस्ट वेट्स ना कि मैं उतारूं तो सही, कोई देखे तो सही। उसी टाइम पर प्रतीक गांधी ने बोलना शुरू कर दिया। वो कहता है भाई मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं अमीर लगता नहीं हूं, मैं शक्ल से गरीब लगता हूं, इसीलिए मुझे हमेशा जब भी मैं ऑडिशंस के लिए गया हूं टेलीविजन शोज पे या कभी फिल्मों के लिए, हमेशा रिच दिखने वाले एक्टर्स को अमीर रोल मिल जाते हैं और मुझे सारे गरीब वाले अजीब अजीब से रोल मिलते हैं। देखा मैंने कहा ना, दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दुख है, इसीलिए आपको जाना चाहिए इस सैटरडे को इस इवेंट पर।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची, गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स, टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट,
3: इट्स टाइम फॉर
1: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: बिल्कुल, फिर वही रात है, फिर वही शाम है, फिर वही थर्सडे है, लेकिन आज का थर्सडे थोड़ा सा अलग है क्योंकि भाई आज के थर्सडे में मैं आई हूँ आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की, लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमें इंतज़ार है सिर्फ एक ऐसी फिल्म का जो कि बहुत टाइम के बाद आने वाली है, एंड यू नो व्हाट आई मीन एंड आई नो व्हाट आई मीन, एंड दैट इज द फिल्म दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, एंड वो आएगी कब, जिस दिन हम और आप जाएंगे पाव भाजी खाने।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: बात कर रही हूँ मैं दृश्यम 3 की। जी हाँ, 2 अक्टूबर को आप और हम सब के सब बिल्कुल पाव भाजी खाने जाएंगे क्योंकि वही आदत हमें पड़ी हुई है पिछले 2 सीजन से, राइट। तो ऐसा है कि बात हो रही थी दृश्यम 3 की हाल ही में, एंड जो डायरेक्टर है अभिषेक पाठक, उन्होंने ये कहा कि भाई ही वॉज अंडर इमेंस प्रेशर क्योंकि सडनली अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद में ही जस्ट एग्जिटेड दृश्यम 3, राइट, एंड देयरफॉर लिखना पड़ा एक पार्ट दोबारा से और कुछ कुछ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जस्ट डेज बिफोर द शूट। नाउ यू कैन इमेजिन अक्षय खन्ना हु वॉज प्लेइंग IG तरुण अहलावत दृश्यम 2 में, ही वॉकड आउट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पॉपुलर फ्रेंचाइज 7 दिन, जस्ट 7 days बिफोर द शूट वॉज स्केड्यूल to commence, और उसके बाद में जयदीप अहलावत को लाया गया। Well, I'm so glad जयदीप अहलावत को लाया गया because for some reason I don't know, I'm not in love with अक्षय खन्ना because also when he was in Singapore कुछ साल पहले he said अरे यार, जब हम FM पे हुआ करते थे उस time पर he was in Singapore and you know for some reason, God for second reason, he said नहीं मुझे रेडियो पे इंटरव्यू नहीं करना। तो मैंने उस दिन से सोच लिया कि मुझे भी नहीं करना इसके साथ कुछ, ठीक है ना। एनीवे, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि ये जो खन्ना का एग्जिट है ना उसकी वजह से पूरा हिल गया सब कुछ और बहुत काम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो ऐसे होता है ना कि भाई उनको और भी बहुत काम करने पड़ते हैं, सो उनको शूट पुश करने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर का भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड ऑल दैट, सो देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। बट अगेन एट द सेम टाइम ही सेड कोई नहीं, हो गया सारा का सारा काम और अब फिल्म बिल्कुल तैयार है और होने वाली है रिलीज बहुत ही जल्दी। एंड दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल चैप्टर अनफॉर्चुनेटली ऑफ दिस अजय देवगन लेड थ्रिलर फ्रेंचाइज। एंड अहलावत जो है इसमें SP क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर बन के आ रहे हैं, हु गोज आफ्टर विजय सलगांवकर एंड हिज फैमिली। वैसे बिटवीन यू एंड आई, जो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने ना ओरिजिनल वाली दृश्यम देख ली है। बताऊं क्या होता है उसमें ना पता है कौन निकलता है?
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4।

0: Alright, cheer up guys. This is Renuka with you. Radio Masti 24/7 पर. जी हाँ, बस हमारे और आपके बीच में रह गए हैं अराउंड 18 मिनट इस टाइम पर. एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू प्रेजेंट यू द लास्ट थ्री गानाज. जी हाँ, द टॉप थ्री गानाज अगर मैं कह सकती हूँ उनको. तो आपको अभी तक समझ में आई कि कौन सा गाना नंबर वन पे होना वाला है? वेल, अगर आ गया है, पता लग गया है, तो मुझे जरूर भेज दीजिए 9151896 3. लेट्स सी इफ योर चॉइस एंड योर स्टाइल मैचेस मस्ती स्टाइल. देखते हैं, जल्दी भेजो.
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था.
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं.
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था.
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी.
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है.
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing Island Wide on 25th September at the cinemas near you.
5: Healthy khao, protein khao.
6: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
5: Healthy khao, protein khao.
6: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
7: Gigi.
6: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
7: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
8: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे.
0: जी बिल्कुल. और इस पर देसी स्टेशन पर देसी वे से कॉन्टैक्ट करने के लिए एब्सोल्युटली यू नो हाउ टू फाइंड अस 9151896 3. एंड इन केस यू आर नॉट लिसनिंग टू अस फ्रॉम आर ऐप, तो फिर समझ जाइए बड़े सारे फीचर्स आप बिल्कुल मिस कर रहे हैं. इसीलिए डाउनलोड कीजिए मस्ती मीडिया 24/7. हेलो, गुड इवनिंग. और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर टॉप के तीन गाने आपका इंतजार कर रहे हैं. उन तीन गानों में से कौन सा लड़ मर के एक दूसरे की गर्दन दबा के नंबर वन पे पहुंचेगा, ये मुझे नहीं पता. एंड वाकई मुझे नहीं पता. आई जस्ट एम गोइंग टू प्ले थ्री सॉन्ग्स हियर एंड आई एम ब्लाइंड विद द फैक्ट कि आज कौन सा वाला नंबर वन पे होने वाला है. लेट्स सी. इम्तियाज अली, मैं वापस आऊंगा. और वो आएगा वापस, लेकिन फिलहाल अपनी बेटी की एंगेजमेंट के साथ में काफी बिजी हैं. और कमिंग अप एक दूसरा गाना,
9: गुलाबी साड़ी अने लाली लाल ला, जिसने में भारी राजा फोटो मजा का.
0: हाय हाय धमाल. Cocktail 2 का soundtrack ये वाला. So well, we've got मैं वापस आऊंगा, we've got धमाल 4 and we've got Cocktail 2. कौन सा गाना होने वाला नंबर एक पर, ये मुझे आप बताएंगे लिख के फटाफट. We are बस ready to play all three गानास for you right away. और ये गाने चलते चलते मैं यहाँ से पतली गली से निकल जाऊंगी, बट नहीं, फिलहाल नहीं, अभी यही हूँ.
10: Trending song number 3.

0: नहीं तो यार।
1: And of course, आप सुन रहे गाना नंबर 3। So now we left with just 2 songs, guys. One from मैं वापस आऊंगा and the other one from Cocktail 2. Which one is going to be गाना नंबर 1? मुझे जवाब आने शुरू हो चुके हैं, but let's see.

0: राइट, इट इज टाइम फॉर मी टू से गुड बाय गाइस। 7:52 यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर कर रहे हैं कुछ मेरे दोस्त मेरा इंतजार आज शाम को मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत बिजी हूँ विद ऑल द इवेंट्स। सो आई एम गोना टेक योर लीव गाइस एंड आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून। मंडे सुबह तो मिलूंगी बट फिलहाल के लिए और भी सोच रही हूँ अगले हफ्ते कब मिल सकती हूँ। लेकिन यू स्टे गुड, यू स्टे वेल एंड यू स्टे स्माइलिंग, ऑलराइट? तब बस सुम बन के रहना, हैप्पी, मतलब याद है ना मैंने सिखाया था आज के शो पे। रह गए दो गाने, देखते कौन सा नंबर वन फिलहाल के लिए चला रही हूँ यहाँ पर गाना नंबर दो एंड ऑफ कोर्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ मुआज एंड टू मेक श्योर दैट यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। रिमेंबर टू स्माइल, स्माइल इज द सेकंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स। बाय।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर टू।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: लर्निंग टू से नो इज इम्पोर्टेंट, बट perhaps even more important is learning when to say it. Hello, hi, welcome in Namaste. Dear Masti Dil Se par aap sabhi ka swagat hai. Main aapki Antra aapke saath aur aaj ki shuruaat no se karte hain. Ek chhota sa word but bolne mein kitni mushkil hoti hai na? Yaar ek favor kar doge? Dil kehta hai no, dimag kehta hai no. But zuban kehti hai, "Ha ha, batao na, kya karna hai?" एंड देन पूरा काम करते हुए अंदर से यही दिल कहता है कि भाई हाँ क्यों बोला, नो क्यों नहीं बोला। हम यही सुनते हैं अक्सर, दैट लर्न टू से नो, सेट बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट योर पीस, एंड एब्सोल्युटली। बट आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है ये समझना कि नो कब कहना है, बिकॉज हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन बाउंड्री वायलेशन नहीं होती, हर बार किसी के लिए एडजस्ट करना पीपल प्लीजिंग नहीं होता। समटाइम्स रिलेशनशिप्स डू नीड कॉम्प्रोमाइज, समटाइम्स पीपल वी लव डू नीड अस टू स्ट्रेच अ लिटल, एंड समटाइम्स वही हाँ हम बार बार बोलते रहते हैं अंटिल इट टर्न्स इनटू रिजेंटमेंट। सो कैसे पता करें? Maybe before saying yes, pause and एक बार अपने आप से वापस से पूछ ले कि मैं ये कर रही हूँ because I genuinely want to, या because I am scared of what will happen if I say no. बस यही सारी बातें और एक introspection जो है हम करते हैं यहाँ पर dear मस्ती दिल से पर। This is the space exactly for these kind of conversations, relationships, friendships, family, work, वो situations जहाँ answer always black and white नहीं होता। यहाँ कोई नाम नहीं, कोई judgment नहीं, आप हमारे लिए simply dear listener और आपके लिए हम dear मस्ती। WhatsApp से आप हमारे साथ connected रह सकते हैं 9151 8963। आज भी कुछ चिट्ठियां पढ़ेंगे, कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे और मे बी कहीं बीच में हम सब ये थोड़ा बेटर समझ पाए कि कब हाँ किसी रिलेशनशिप को नर्चर करती है और कब नो खुद के साथ रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है। सो जो दिल में है कह दीजिए अगर आपको कहना है। यह डियर मस्ती दिल से स्टार्ट्स राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: डियर मस्ती, दिल से. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है.
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारा वो खास शो जहां पर हम स्ट्रेंजर जरूर हैं लेकिन आपके वो दोस्त हैं जो सिर्फ आपकी चिट्ठियां और आपकी दिल की बात सुनने के लिए बिल्कुल यहां पर तैयार हैं. मैं हूं आपकी अंशरा यहां पे आपके साथ. और अगली ये जो मेरे पास चिट्ठी है एक रिलेशनशिप को लेकर है, बट इंटरेस्टिंगली प्रॉब्लम शायद आर्ग्यूमेंट किस बात पर हुआ वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि आर्ग्यूमेंट करते कैसे हैं. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई रीड द लेटर फॉर यू. सुनिए, डियर मस्ती, व्हेनेवर माय वाइफ एंड आई आर्ग्यू, आई नीड सम टाइम अलोन बिफोर टॉकिंग अगेन अबाउट इट. शी वांट्स टू सॉल्व एवरीथिंग इमीडिएटली. इफ आई वॉक अवे शी फील्स अबैंडन्ड. इफ शी कीप्स टॉकिंग आई फील कॉर्नर्ड एंड से थिंग्स आई रिग्रेट लेटर. How do two people resolve conflict when even their way of fighting is different? Very nice question actually. So ये बहुत ही relatable सा situation आपको नहीं लग रहा है? हम कहते हैं ना opposites attract, है ना? And हो गए attract, अब argument कौन solve करेगा? But seriously, हम सब कितने डिफरेंट हैं ना, हर कोई. वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. किसी को गुस्सा आए तो दे नीड टू टॉक इट आउट इमीडिएटली, नहीं कि आज ही अभी बात खत्म करो, मुझे अनरिजॉल्व छोड़कर मत जाओ. और दूसरा पर्सन एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए. एंड इंटरेस्टिंगली दोनों अपने हिसाब से रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वन पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक बिकॉज डिस्टेंस फील्स स्कैरी, द अदर वॉन्ट्स डिस्टेंस बिकॉज टॉकिंग इन दैट मोमेंट फील्स डेंजरस. हमने ये अपने घरों में भी देखा होगा, पेरेंट्स को ही देख लीजिए. मेरे पेरेंट्स की भी अपनी पर्सनैलिटी, इतनी सारी डिफरेंसेस हमेशा से ही थी. एक सिचुएशन पे दोनों का रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता था. एंड ग्रोइंग अप हम सब अनकॉन्शियसली ये सब ऑब्जर्व भी करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होता है, कौन चुप हो जाता है, कौन इमीडिएटली बात करता है, कौन थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है. देन वी एंटर आवर ओन रिलेशनशिप्स कैरिंग आवर ओन पर्सनैलिटी, हमारी खुद की हैबिट्स और इमोशनल वायरिंग. एंड सामने वाला अपना पूरा सूटकेस लेकर आता है. सो मे बी दिस इज नॉट सिंपली हु इज हैंडलिंग द आर्ग्यूमेंट करेक्टली. मे बी द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू टू डिफरेंट पीपल क्रिएट अ वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट दैट फील्स सेफ फॉर बोथ. बिकॉज डियर लिसनर, अगर आपको स्पेस चाहिए और उन्हें रीअश्योरेंस, क्या एक को गिव अप करना पड़ेगा या कोई मिडल ग्राउंड हो सकता है? I am not going to answer this just yet. Let me come back and tell you what I think both of you. मैं कैसे देखती हूँ, basically मेरा POV इस बात को लेकर क्या है. So stay with me. ये है Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू मस्ती मीडिया नेटवर्क पर रेडियो मस्ती 24/7 और उसका ये बहुत ही खास शो डियर मस्ती दिल से। मैं हूँ आपकी अंशरा और अभी बस ब्रेक से पहले हमारे डियर लिसनर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। Whenever he and his wife उनकी argument होती, he needs space and she needs to talk it out immediately. वो walk away करे तो wife को लगता है she is being abandoned. Wife बात करती रहे तो he feels cornered and sometimes says things which he later regrets. So सवाल था कि when even our way of fighting is so different, conflict resolve कैसे करे? My dear listener, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है दैट नीदर ऑफ यू इज नेसेसरीली डूइंग इट रॉन्ग। आपका मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मे एक्चुअली मीन आई वॉन्ट टू काम डाउन फर्स्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू अननेसेसरीली, बट उन्हें वो शायद नहीं समझ में आ रहा है। यू डोंट मैटर इनफ फॉर मी टू स्टे एंड टॉक, मे बी लाइक समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली उनका भी अभी बात करो परहैप्स मीन्स दैट प्लीज रीअश्योर मी दैट वी आर ओके, बट आपको वो फील होता है कि यू आर नॉट गिविंग मी स्पेस टू ब्रीद। Same argument, complete different emotional experience. तो next fight के बीच में अगर हम system decide ना करें तो maybe एक rule बना ले, when both of you are okay, you could say that when things get really heated, I need some time to calm down. I am not leaving the conversation या फिर or you. Give me 30 minutes and I'll promise we will talk about it later again. And you know, ये एक important हिस्सा होता है जब आप किसी को return time देते हो, मुझे ऐसा लगता है personally. बाद में बात करेंगे और I promise जरूर करेंगे, उस time पे शायद rejection जैसा feel हो, but it feels very different when someone says yes we will talk about it. That is also a kind of reassurance because now one person gets the space, the other gets the reassurance. So dear listener, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। इफ यू से यू विल कम बैक इन 30 मिनट्स या व्हाटएवर टाइम यू हैव सेड, मेक श्योर दैट यू कम बैक। स्पेस कैन नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू अवॉइड डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस एंड योर वाइफ ऑल्सो हैज टू रिस्पेक्ट द पॉज विदाउट फॉलोइंग यू फ्रॉम रूम टू रूम कंटिन्यूइंग द आर्ग्यूमेंट। सो मे बी इवन क्रिएट एक सेंटेंस दैट मीन्स पॉज एंड नॉट गुड बाय, वी आर ओके, आई जस्ट नीड टू calm down and you know I will come back. So sometimes jo conflict hota hai is not about finding kiska style correct hai, it's about learning how to translate aapka apna style for the person you love, because ek acha relationship doesn't mean two people fight the same way, it always eventually means that they will learn how to fight without making each other feel unsafe. I hope कभी कभी मुझे ऐसे सच में लगता है एंड मैं ऑनेस्टली अपने दिल की बात बता रही हूँ कि इतनी सारी जब हम यहाँ पे बातें करते हैं ना, काश ये समझदारी वाली बातें जो है हम अपने लाइफ के सिचुएशंस में भी यूं ही अप्लाई करें जैसे कि हम अपने पर्सपेक्टिव में बताते हैं। ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आई रियली होप दिस हेल्प्स।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
1: मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: काश ऐसा हो पाता कि आप अपने पुराने दिनों में वापस जा पाते। काश उसका एक हैवी अमाउंट हमें बता दिया जाता तो हम सब ट्राई करते, बट प्रैक्टिकली जो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको सोचकर क्यों इतना ज्यादा परेशान होना। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि जो पॉइंट है ही नहीं उस पॉइंट के बारे में क्यों सोचना, बात का पतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल मेरे हाथों में जो लेटर आया है उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और ऐसा करते करते मुझे 8 साल हो चुके हैं, बट आई मिस माई ओल्ड गोल्डन डेज जब मैं अकेले ही रहती थी, अकेले अपने हिसाब से जीती थी, मेरे पास सब कुछ था और मेरा सबसे बढ़िया टाइम तभी निकल कर गया था। और इस बात को मैं हर रोज कोसने लगी हूँ और इसका गुस्सा सब पर निकालने लगी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे पता क्या बोल रही हूँ, आप ना दोनों ही वक्त का चार्म जो है ना वो मिस कर रही हैं। डेफिनेटली आज आप लाइफ के जिस फेज में हैं उस फेज में भी बहुत खूबसूरत पल होंगे, लेकिन आप पुरानी बातों को याद करके उन फेजेस को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बिकॉज आपको प्रैक्टिकली ये तो पता है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, पुराने दिन नहीं आ सकते, और ऐसे में पुराने दिनों को सोच सोच कर आप अपने आप को और ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हो। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है अब उसके बारे में सोचना कैसा?

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूं आपकी अंशरा, यहां आपके साथ, और सीधा अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं। और उसमें एक वर्ड जो है, ऐसा मैंने पढ़ा, जो फैमिलीज में बहुत कभी कभी कैजुअली यूज कर लिया जाता है, एडजस्ट। तो एडजस्ट कर लेना, अरे तेरे लिए तो आसान है, अरे उसकी सिचुएशन को समझ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर भी लेते हैं, बट व्हाट हैपेंस व्हेन एडजस्टमेंट स्लोली बिकम्स एक्सपेक्टेशन। चिट्ठी पढ़े। डियर मस्ती, माय सिस्टर हैज टू यंग चिल्ड्रन एंड आई हैव नन, एंड बिकॉज आई डोंट हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द फैमिली ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट मी टू एडजस्ट अराउंड हर। डिनर के टाइमिंग्स हो, हॉलीडेज, फैमिली प्लान्स, इट्स यूजुअली कि यार तुम एडजस्ट कर लो ना, तेरे लिए आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ओके विद इट, बट रिसेंटली आई सेड नो टू चेंजिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मी, एंड एवरीवन बिहेव्ड लाइक आई वाज बीइंग डिफिकल्ट। जस्ट बिकॉज एडजस्टिंग इज ईजियर फॉर समवन, डज दैट मीन दे शुड ऑलवेज बी द वन एक्सपेक्टेड टू डू इट? माय डियर लिस्टनर, आई थिंक a lot of people including me will connect with this, even if their situation is completely different, because families mein roles quietly na ban jate hain. Iske chote bacche hain, isko flexibility chahiye, iske hisab se kar lo, iski job demanding hai, isko disturb mat karo, ye paas mein rehta hai, ye kar lega, ye easy going hai, ye to adjust kar hi lega. And maybe initially aapne genuinely happily adjust bhi kiya, you understood your sister's situation, you love her children, obviously you knew practically it was easier for you, but somewhere along the way perhaps aapki choice became everyone's assumption, and that's where feelings changed, because there's a difference between someone asking ki would you mind adjusting this time and telling you obviously ki adjust to tumhe karna padega, and phir jis din aapne finally kaha ki is bar I cannot, suddenly you are difficult. And I think that's the emotion underneath this letter. Maybe you are not even angry about adjusting. Maybe aap just hurt ho that all the time, main hi kyun? Meri zindagi kya bilkul invisible si ho gayi hai baaki sab ke liye? But there's another side too. Your sister genuinely does have constraints that you may not have. So how do families balance practicality and fairness? And when should we happily adjust for people jinse hum pyar karte hain? When it is okay to say I understand teri situation, but this time mera wala bhi matter karta hai? I want to give it some thought. Let me come back and tell you about my perspective, how I see this situation on Radio Masti 24/7. Aap sun rahe hain Radio Masti Dil Se.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल, मैं हूं आपकी अंतरा आपके साथ। एंड ब्रेक से पहले हमारे डियर लिसनर की सिचुएशन थी कि उनकी सिस्टर और उनके दो यंग बच्चे हैं, सो फैमिली प्लान्स में मोस्टली उनसे एडजस्ट करने की एक्सपेक्टेशन होती है। डिनर टाइमिंग चेंज करो, हॉलीडे प्लान चेंज करो, तू एडजस्ट कर ले, तेरे लिए ईजियर है। एंड मोस्टली शी हैप्पीली डज दैट, बट रिसेंटली समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड हमारे डियर लिसनर ने कहा कि इस बार नहीं कर पाऊंगी, एंड एवरीवन फेल्ट दैट शी वाज बीइंग डिफिकल्ट। तो सवाल था कि जस्ट बिकॉज एडजस्टिंग इज इजियर फॉर समवन, शुड दे ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड टू डू इट। माय डियर लिसनर, मेरे लिए आंसर है नो, बट that doesn't mean ki adjustment itself is unfair. Your sister has young children, obviously unki life mein restrictions zyada hongi, bedtime, school, meals, bachcho ke saath bas ready ho jao, nikalte hain, utna simple hota nahi hai. So yes, sometimes practicality says ki aap adjust kar lo, but practicality should not come or become a permanent rule that says ki aapka time less important hai, because your life is more flexible. And that's, I think, where the difference is. I think problem adjustment में नहीं है, problem assumption में है कि अगर कोई कहता है, I know you usually adjust for us, but would you mind doing this time too? Somehow you feel seen, right? But जब कोई कहता है ना कि यार तुझे ही adjust करना चाहिए, तू ही adjust कर ले every single time, eventually आपकी खुद की generosity जो है starts feeling like a duty. So next time, गिल्ट में बस बोलने के बजाय सिंपली से कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट्स डिफिकल्ट फॉर हर, मोस्ट टाइम्स आई एम हैप्पी टू वर्क अराउंड इट, बट दिस पर्टिकुलर प्लान इज इंपॉर्टेंट टू मी, सो दिस टाइम आई कैन नॉट चेंज इट, सॉरी। आई थिंक दैट्स व्हाट यू डिड, राइट? कोई आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई लिस्ट नहीं थी। And equally, don't turn this into keeping the score as well. Family relationships can't work on ki last time mein or this time mein tum karo. Sometimes one person genuinely will adjust more because circumstances us hisab se ho jati hain. But the difference should be that unki flexibility is appreciated and not taken for granted. Ye meri feeling hai iske bare mein. I don't know how you feel about it after listening to my perspective. Sometimes love says it's easier for me, so I will adjust. And sometimes love should also be able to hear, not this time. Yeah, without turning it into a problem. Hope this helps. This is Dear Musti, Dil Se on Radio Musti 24/7.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: 10 ka 20, 10 ka 20, 10 ka 20, 10 ka 20.
3: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
0: Time to raise the bar. रम्मा Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
4: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mera.
5: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वो लोग जो दिल की बात जुबा पर ले आते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली दिल की बातें जुबा तक आए ना आए, लेकिन हमारे पास आपके लेटर के थ्रू जरूर आ जाती है। एवरी ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स हम सभी आरजेस अनोनिमस वे से आपके लेटर्स पढ़ते हैं और आप तक जवाब भेजते हैं। खैर, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से, मुझे जो मेरा पार्टनर मिला है ही इज वेरी वेरी वेरी गुड, लेकिन वो कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, तो मेरे पार्टनर में ये दाग है कि वो बिना बताए मुझसे मतलब नाराज हो जाता है और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगने लगती है, तो मैं और ज्यादा सवाल पूछने लगती हूँ और हमारी लड़ाइयां बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट सा है, वो कुछ चीजें पजल की तरह इनके रिश्ते में सॉल्व करना रह गई है, तो क्या करना चाहिए? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में एक छोटा सा पॉज ढूंढना है। यू नो व्हाट, मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, इसलिए नाराज नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बात का बुरा लगता है, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, फिर तीसरी बात उनके मन में आ रही होती है और सब कुछ पजल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हैं ना, उन्हें उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उनको थोड़ी सी स्पेस दे दो, और थोड़ी देर बाद ही एक जेन्युइन केयर दिखाते हुए कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी कुछ तो बनाकर दे दो और उस तरीके से, उस बहाने से बात करना शुरू कर दो। आई बेट यू ऐसे लोग ना देखते ही देखते पिघल जाते हैं बॉस, और आपको लगेगा कि वाओ, हाँ जी नुपुर का जवाब तो यही होगा इस सिचुएशन पे, पर हाँ और भी बहुत सारे सवाल डियर मसीह दिल से शो पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर में साथ में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे उनके जवाब। मीनवाइल मैं आरजे नुपुर आपके लिए लगा रही है ये गा।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. What? Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
4: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, अंतरा बिल्कुल यहाँ पर वापस आ चुकी है अपनी अगली चिट्ठी को लेकर, जहाँ पर दो इमोशंस एक साथ चल रहे हैं, रिलीफ एंड गिल्ट। डियर मस्ती, माय क्लोजेस्ट कलीग हाल ही में ले ऑफ हुआ व्हाइल आई केप्ट माय जॉब। आई एम रिलीव्ड फॉर माय सेल्फ, बट मुझे काफी गिल्टी फील होता है एवरी टाइम आई स्पीक टू हिम। He hasn't blamed me at all, but celebrating anything at work now feels very insensitive. How do you hold gratitude and guilt at the same time? Dear listener, सबसे पहले तो दो opposite emotions definitely है, but सवाल वही है, right? कि whether it can exist together or not. You can feel terrible that your friend lost अपना job, and still feel relieved that you did not lose yours, and that's okay. And you can still feel relieved, right? So one feeling that doesn't cancel the other. ऐसा मैं सोचती हूँ। कभी-कभी जब कोई difficult चीज होती है to somebody close to us, we escape it. The mark exchange सा question पूछता है कि why him and not me, and then even our relief starts being or feeling selfish. But dear listener, आपकी जॉब बचने से उनकी जॉब नहीं गई, and that's also a fact. You did not take something from him, and notice something important. उन्होंने ब्लेम भी नहीं किया है आपको. So don't accidentally create guilt on his behalf that he has not asked you to carry. Yes, sensitivity very important. जरूर रखिए. इमीडिएटली उनके सामने ऑफिस की प्रमोशन पार्टी का, यू नो, 10 मिनट का ब्रैग करना या कमेंट्री देना प्रोबेबली वो जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, बट अपनी हर अचीवमेंट को हाइड करना भी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज सिंपैथी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा होना ही बंद कर दे, बट व्हाट यू कैन डू इज बी अ फ्रेंड विदाउट ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग। जस्ट चेक इन, हाउ इज ही डूइंग? If he is job hunting, wants some help of yours, share contacts, openings, references. But please don't make every conversation sound like ki mujhe to bahut hi guilty feel ho raha hai that I still have my job and you are like this. Because then unknowingly the person who is already struggling may end up comforting you, and that's not fair either. Soch ke dekhiye. Instead, privately allow yourself to say that I'm very grateful ki mere paas abhi bhi apni job hai. And I'm also sad that he lost his. Both are true. Gratitude doesn't make you disloyal. Relief doesn't make you insensitive. And guilt is not always proof that we have done something wrong. Sometimes, iska matlab simple itna hi hota hai, someone we care about is hurting, and we wish they were not. So support him without shrinking your own life. You don't need to feel bad about being okay in order to prove that you care about somebody who is not. I really hope this helps, my dear listener. Yeh hai Diya Masti, Dil Se, Radio Masti 24/7 par.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं यहाँ पर अंतरा आपके साथ, एंड जैसा कि आपको पता है दैट देयर इज अ टाइम जहां पर अंतरा यहाँ पर ऑन एयर अकेली नहीं होती है। हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे संघर्ष साथी श्रीधर, हु इज ओवर हियर ऑलरेडी। हाय श्रीधर, वेलकम बैक टू डियर मस्ती।
2: थैंक्स अंतरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड ग्रेट टू बी बैक।
1: आज जो श्रीधर केस लेके आए हैं, अभी बस हम लोग यहाँ पे साथ में बैठे ही हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट एंड वी वर लाइक दैट या दीज थिंग्स आल्सो हैपन। सो श्रीधर, आई विल जस्ट लेट इट गो टू यू, बताए हमारे को इस केस के बारे में, दैट व्हाट वाज इट ऑल अबाउट।
2: सो एक कॉल आया था, आई एम फीलिंग वेरी एंक्शियस, प्लीज हेल्प मी आउट इमीडिएटली। मैं बोला यार, anxiousness has a wide range, so kis baat ki anxiousness hai, so we had to do a bit of inquiry. So usne bola it is about relationship. Bola yaar relationship, everybody gets anxious, so be specific, be more specific. Phir usne bola, can you please not share with anyone, don't tell my name out. Nahi aisa nahi hota hai. I mean, if you are facing a problem, there are others facing the same problem as such, so we'll try to help out. So usne bola ki 4 साल पहले his sister-in-law was getting unusually close to him. You can imagine unusually. So he is now scared that she is going to go out and she is going to frame him that he was the bad guy.
1: Ooh.
2: So this was his anxiety, and it happened about 4 to 5 years back. That's what he said. So this needed a bit of introspection from my side as well, and we had to weigh out the pros and cons, kya hua, kya hoga, kya nahi hoga, to help him out.
1: Wow. And I feel this is one of those cases जहाँ पर दिस इज वन ऑफ दोज इमोशंस और एंजाइटी इमोशंस जो कि आप ना अपने आसपास किसी को भी नहीं बता सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू टेल टू अ स्ट्रेंजर हु इज अ ब्लैंक स्लेट एंड वुड लिसन टू दैट पर्सन फ्रॉम द वेरी लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड विच इज वाई दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ डियर मस्ती दिल से has been working so well with the people, because we are like stranger but aapke dost yahan par, we have absolutely no idea ki kahan se kya aa raha hai, but well kya perspective Sridhar ka raha is pe and what did he suggest usko janne ke liye, we will have to take a break and come back and we will get to know. Till then, yeah, aap hamare sath bane rahiye on Dear Masti Dil Se. Main hu Antra, saath mein hai hamare sanghash saathi Sridhar.

0: don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on GTMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GTMart, your personal grocer.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back everyone to Dear Masti Dil Se. This is your Sangharsh Sati Sridhar on Radio Masti 24/7 with the ever bubbly Antha.
2: एक बहुत ही ऐसा केस की यहाँ पर बात चल रही थी जहाँ पे श्रीधर ने बताया दैट दिस गाय हु कॉल्ड एंड सेड दैट कि बहुत एंशियस उनको फील हो रहा है एंड दिस इज अ रिलेशनशिप इशू। 4-5 साल पहले जो है उनकी सिस्टर इन लॉ जो है उनसे काफी क्लोज होने की उनसे कोशिश की एंड नॉट लाइक वेरी अनयूजुअली क्लोज काइंड ऑफ अ थिंग, बट उनको ये डर आ गया कि बाद में जाकर वो कहीं पूरी की पूरी बात सिर्फ और सिर्फ इन पे ही ना डाल दे। राइट श्रीधर, इफ आई गॉट दैट
1: राइट? करेक्ट।
2: सो श्रीधर, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट शुड ही, व्हाट ही डिड?
1: ऐसे ऐसे केसेस में ना मुझे सच जानना बहुत जरूरी था, तो फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हिम इज देखो फिजिकल इंटीमेसी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। So he said, नहीं, फिजिकली कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने बोला, why did you think this kind of feeling was developing? He said, no, it was very seducing type and things like that. So it is very evident. तो फिर मैंने पूछा कब हुआ था ये? So he said, जब शादी हुई थी पहले, so it was around 4 or 5 years back. फिर मैंने पूछा husband करते रहते थे? तो he said he was working some night shift. तो then I asked, how is the family now? तो उसने बोला अब दो बच्चे हैं एंड एवरीबॉडी सीम्स टू बी हैप्पी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई सेड आफ्टर द 4 इयर्स डिड एनीथिंग हैपन, डिड एनी, वर देयर एनी रीसेंट इंस्टेंसेस कि अचानक तुम्हें ऐसा डर क्यों हो गया, यू नो, व्हाई डिड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग दिस? ही सेड नहीं, ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट विजिटेड देम वंस देन सडनली आई गॉट दिस फीलिंग, यू नो। सो आई थिंक दे आर स्टेइंग इन डिफरेंट प्लेसेस, दे आर नॉट स्टेइंग टुगेदर। सो अचानक आई गॉट दिस फीलिंग। तो इसके लिए वी रियली हैड टू ब्रेक इट डाउन एंड लुक एट इट प्योरली फ्रॉम लॉजिक एस्पेक्ट। तो मैंने पूछा अगर उसने ये काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर लो थोड़ा, डोंट कीप इंटरैक्टिंग और डोंट गेट वेरी क्लोज, दैट क्रिएट्स हाफ द इश्यू, हाफ द इश्यू इज सॉल्व्ड देयर। देन आई डिड टेल दैट ही वाज स्कैर्ड दैट अगर वो व्हाट्सएप मैसेज कुछ भेजेगी, इफ आई डोंट रिप्लाई शी विल थिंक दैट आई एम क्रिएटिंग अ डिस्टेंस। ऐसा नहीं, ऐसे कैजुअली रिप्लाई करो, जस्ट कीप इट टू दैट, देयर इज नो इश्यू विद दैट। सेकंड थिंग आई डिड इज देखो, हु इज गोइंग टू लूज मोर इफ शी गोज आउट एंड बर्न्स दिस ब्रिज? ठीक है, सो यू सेड फैमिली वाइज शी इज वेरी हैप्पी, दो बच्चे हैं एंड हस्बैंड है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग गुड इन देयर साइड। सो द फियर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग मे हैपन, आई जस्ट सेड इज गोइंग इनटू ओवरथिंकिंग मोड। सो वी हैड टू कंडीशन दिस इन डिफरेंट वेज फॉर हिम टू एक्सेप्ट इट एंड विल बी, वी वर्क ऑन अ स्मॉल माइंडफुलनेस टेक्निक। जब भी वो एंग्शियसनेस आती थी तो वॉट ही कुड डू टू ब्रिंग इट डाउन, so far seems to be okay. ज्यादा मैसेज आया नहीं, ऑन एंड ऑफ ही वुड मैसेज, नो आई एम फीलिंग स्केयर्ड, नो, बोलता हूं ठीक है आ जाओ कॉल पे, वी जस्ट डू अ स्मॉल सेशन एंड देन लेट गो।
2: माय क्वेश्चन हियर इज दैट ये जो 4-5 साल पहले जो भी हुआ था, सो वाज ही आल्सो इन्वॉल्वड लाइक इमोशनल साइड?
1: हां, दैट इज व्हाट आई आस्क्ड हिम, दैट्स व्हाई पहले पूछा था। ही सेड यस देयर वाज अ बिट ऑफ अट्रैक्शन। उसने बोला अट्रैक्शन थी वहां पे एंड बट आई फेल्ट इट इज वेरी रॉन्ग, सो आई हैड टू ड्रॉ बैक।
2: Wow, these kind of things also happen and that is why this platform is there. We can

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: सो जो अच्छी आदतों की लिस्ट है ना, वो तो छोटी होती जा रही है और वाइसी वर्सा दूसरी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तब समझ लेना कि लाइफ में थोड़ी तो दिक्कत है बॉस। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली जो मेरे हाथों में लेटर आया हुआ है, उन्होंने जो कन्फेस किया है वो आज के टाइम की सच्चाई बन गई है। मतलब ये जान लो तो दिक्कत, ना जानो तो दिक्कत। तो जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उन्होंने बोला है कि हाय, डेफिनेटली मुझे ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, बट द पॉइंट इज कि मुझे मेरे पार्टनर का मोबाइल फोन चेक करने की आदत लग चुकी है। जैसे ही वो ऑफिस से आती है और मेरा उसके फोन को कॉर्नर पे ले जाना और जस्ट चेक करना, स्क्रॉल करना आदत सा बन गया है। एंड ऐसा नहीं है कि कभी मुझे कुछ मिला हो, बट हाँ मेरे पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके चलते मैं आज भी बहुत डर डर के रहता हूँ। तो मुझे ऐसे ही डर में रहना चाहिए, मतलब पहले ही सिक्योर रहना चाहिए, या फिर ये सही नहीं है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे आपका डायरेक्शन सही नहीं लग रहा है, आपकी सोच तो सही लग रही है। चलिए ठीक है, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं उनको बता दूं, आप सेफर साइड तो चल रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक सो कि आप किसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं? हाँ अच्छा, कोई आपसे एकदम लॉयल है और आप लगातार उस पर शक कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि उसे पता भी नहीं चल रहा है, पर आप क्या खुद से खुद की नजरें मिला पा रहे हैं? चलो ठीक है, ये सारी बातें भी किनारे रख देते हैं। जिस दिन उन्होंने आपके संग ये ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया कि वो हर रोज आपका सेलफोन चेक करें, तो आपको कैसा लगेगा? बस वो फील आप एक बार फील कर लो ना, उसके बाद शायद आप जबरदस्ती ये चीजें ना करो, ठीक है?
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।
1: बिल्कुल, डियर मस्ती दिल से शो पर ऐसे ही बड़ी सारी बातें और बड़े सारे सवाल और जवाब कर रहे हैं अनोनिमस तरह से आपका इंतजार। डियर मस्ती दिल से शो।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: Saturday night ka plan? Party, concert, ya phir bhajan baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: And with that, we come to an end of another beautiful episode of Dear Masti Dil Se. Jaate jaate, main actually emotions ke baare mein hi baat karna chahti hu, because we saw so many kind of emotions. Chahe wo Nupur ki chithiyon mein ho, chahe wo Renuka ki chithi mein ho, chahe wo meri chithiyon mein ho, chahe wo Sridhar ke case mein ho, which was very very hatke. Because throughout these conversations, कितने तरह के different emotions आए, कहीं प्यार था, कहीं frustration, कहीं relief, कहीं seduction, but उसके साथ guilt, कहीं दोस्ती, but उसके साथ hurt भी, कहीं किसी को space चाहिए तो किसी को reassurance चाहिए, and a very beautiful line which Sridhar said, and I would like to keep that with me for today. No emotion is a small emotion. है ना, एंड दैट इज सो ट्रू। हम बहुत इजीली अपनी फीलिंग्स को साइज देने लगते हैं कि इतनी सी बात पे हर्ट क्यों हो रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे सैड नहीं होना चाहिए, लोगों की लाइफ में मुझसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। छोड़ो यार, कैसी स्टूपिड सी बात है। बट अगर वो स्टूपिड सी बात बार बार आपके दिमाग में आ रही है, then for you in that moment it is not small. इसका मतलब ये नहीं है कि हर इमोशन पर immediately react करना है, हर गुस्से में confrontation नहीं करना है, हर hurt में relationship खत्म नहीं कर देना है, but maybe हर emotion को एक बार खुद से सरूर से सुनना चाहिए, because sometimes you know, जैसे jealousy tells us what we deeply want, guilt tells us what we care about, जब गुस्सा आता है tells us where something is not just not right, sadness sometimes simply tells you कि जो भी था it mattered to me, maybe emotion को respect करने का मतलब उसे control देना नहीं होता, it simply means not dismissing it before understanding it, and that's what we try to do here every single week. Tuesday jab hum aate hain shaam ko on Dear Masti Dil Se, koi naam nahi, koi judgment nahi, but thodi si conversation, wo bhi dil se. Keep writing to us, hamare WhatsApp number pe 9158963. Filhal ke liye main Antra, and on behalf of Renuka Nupur and Sanghash Sathi Sridhar, signing off from Dear Masti Dil Se. Aur aaj ke liye बस इतना सा है कि जो फील हो रहा है उसे छोटा मत कहिए, पहले समझिए फिर डिसाइड करिए उसके साथ क्या करना है। गुड नाइट।

0: Oh, when you shake that thing, you really make the bell ring, and they go ring ding ding.
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: रात

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

0: सीख ले।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: मुरैया मारे कील को मुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: मुरैया मारे कील को मुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: फांटा वावा, चलो आ जाओ शुरू करें अपना ये ड्रामा यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, स्वागत है आपका। क्या चल रहा है मस्ती मैडनेस?
1: They make Friday mornings the
2: funkiest. मैंने सोचा सुबह सुबह क्या हो गया है और रेणुका को आते ही अंतरा वाह वाह क्यों कर रही है। मैं कहा मैं तो कुछ किया भी नहीं, मतलब ये मतलब अच्छा नाइस नॉट बैड।
0: सुनने में अंटा वाह वाह ठीक है, अंतरा वाह वाह, लेकिन डांस के जेस्चर्स भी वही चाहिए। आ जाओ रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ बिल्कुल, 25 तारीख हो चुकी है और नौवां महीना जी हाँ समाप्त होने को आया है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि 10वें महीने में पैदा होने वाली हूँ मैं। ओ माय गॉड, डिलेड एंट्री। क्यों अंतरा?
2: डिलेड एंट्री एंड दिस इज दैट टाइम आल्सो ऑफ द ईयर व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अगले महीने मेरा बर्थडे आने वाला है।
0: आई नो बट यार पता है क्या हो रहा है कि ये एक्साइटमेंट ऑफ बर्थडे सीरियसली खत्म ही नहीं हो रही है यार। ऐसे क्यों क्यों है ये बीमारी?
2: आई थिंक ये बढ़ती जाती है और खत्म होनी भी क्यों चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन, दैट व्हाई। ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी टू बी बोर्न लाइक अदर्स आल्सो आर हैप्पी आई एम श्योर।
0: देन आई गो बैक ऑल दोज इयर्स जब मैं चौथी बेटी घर में पैदा हुई थी। आई डोंट थिंक आई कैन से सब इतने खुश थे। ड्रामा क्वीन जी हाँ कमिंग अप सुबह सुबह, क्योंकि एक नहीं दो दो ड्रामा क्वीनें आ चुकी हैं यहाँ पर।
2: of course.
0: है ना अंतरा?
2: ऑफ कोर्स।
0: उठ जाओ अंतरा, तुम ऐसे लग रही हो कि सो जाओगी किसी भी टाइम पर। उठ जाओ उठ जाओ।
2: सबसे बेस्ट होता है रेणुका के सामने जमाई लेना, फिर कहती है मैनर्स अंतरा, मैनर्स,
0: मैनर्स अंतरा, मैनर्स।
2: आप भी कर लो, लेट्स मेक द यौन संबंध।
0: ओह कम ऑन, देयर शी गोज अगेन।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर। सुबह पता नहीं कहाँ से आ रही है मेरे अंदर एनर्जी, पता नहीं।
1: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे।
3: आपको नहीं लगता कि फ्राइडे होना ही काफी होता है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है? बोल तो फ्राइडे, हम ऐसे उचक रहे होते हैं इधर से उधर।
2: डेफिनेटली फ्राइडे है तो बड़ा ही फर्क है। और अगर आप सुन रहे हैं ऑनकोर तो आप सोच रहे हैं ये फ्राइडे में क्यों जी रही हैं लड़कियां, तो वेल दैट्स बिकॉज आप ऑनकोर सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है ना भाई।
3: हाँ जी, और अगर हम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप हमारा नया रिकॉर्डिंग फीचर करके हमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस।
2: तीन बार सुन सकते हैं, फिर तो चार बार सुन सकते हैं, क्या बात है।
3: कितनी बार?
2: उफ, बहुत ही लकी लोग हैं आप। आपने अपना ऐप बाय द वे मस्ती मीडिया 24/7 अपग्रेड किया है या नहीं किया है, और नए नए फीचरों के बारे में क्या ख्याल है हमें जरूर बताइएगा। 9151896। एक्चुअली मैं नंबर क्यों बता रही हूँ, टॉप राइट कॉर्नर पर व्हाट्सएप दबाइए बस बटन और भेज दीजिए हमको मैसेज और कहिए लड़कियों तुम हमारा दिल ले लिया हो, ले चुकी हो, है ना अंतरा?
3: बिल्कुल, एक्चुअली सबको दबाना इतना पसंद था तो वी मेड इट इजी कि दबाना ही तो है, तो बटन दबाओ, है ना?
2: ओके, एक्सक्यूज हर प्लीज, इट्स फ्राइडे।
3: यस, इट्स फ्राइडे, बट हाउ अबाउट रेणुका, कोई आपको बोले दैट यू कैन रेंट योर फेस, हाउ डज दैट साउंड?
2: रेंट माय फेस मतलब रेंट इट आउट?
3: यस, रेंट इट आउट।
2: नो थैंक यू। ओके,
3: नो, बट चाइना में लोग ऐसा कर रहे हो और करके बहुत पैसा कमा रहे हैं।
2: करने दो, मेरी फेस सिर्फ मेरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है टाइप्स।
3: You all must have seen these AI dramas, okay? इसका एक ट्रेंड चला हुआ है कि AI dramas, अलग अलग तरह की कहानियां जो है वो आती ही रहती है। सो पीपल इन चाइना आर बेसिकली लाइसेंसिंग अपना अपना चेहरा AI dramas के लिए, लाइक लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि हाँ तुम बिंदास मेरा चेहरा। सो दे आर लाइक AI एक्टर एंड एक्ट्रेसेस,
2: राइट?
3: बिकॉज दे हैव अग्रीड टू रेंट देयर फेस। एंड भाई बूमिंग बिजनेस ये चल रहा है, 14-15 अब 50-50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं लोग।
2: वाओ। और दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी, वैसे हम करते नहीं है बात बॉलीवुड की, लेकिन मनोज बाजपेयी ने सू किया है कि मेरा एआई फेस यूज करना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूज करे, मैं सिर्फ ओरिजिनल हूँ। आई थिंक उसके और मेरे विचार काफी मिलते हैं।
3: यस यस, बिल्कुल सारे ओजी वाले यही एजी कर रहे हैं कि हमें नहीं करना। आई थिंक आप लोगों ने इतने पैसे कमा लिए, ये तो मैं चुकी हूं, उनको भी कमाने दो।
2: देखो बहन, दुनिया में सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन में सब तो नहीं घुसते ना, क्योंकि पैसे होते हैं। नहीं, पैसा हर चीज नहीं होता, इंसान के अंदर की जो कॉन्शियस होती है वो सबसे बड़ी बात है।
3: हाँ जी, हाँ जी, और ये कहने में कितना अच्छा लगता है लोगों को। वेरी नाइस, वेल डन।
2: वैसे कहाँ बेच सकते हैं ये बताना जरा शक्कर।

0: पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: लड़की है या लड़का, दोनों ही बराबर होते हैं, है ना अंतरा? कि है ना अंतरा?
0: They make Friday mornings the fun.
2: जी जी जी जी, लेकिन लोग ऐसा भी कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन क्या है.
1: तो अगर बाल बढ़ाने हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन मस्ती 24/7.
2: ये तो ओपन फॉर ऑल है ना, मतलब जिसको भी मन करे बढ़ा ले.
1: बिल्कुल,
2: कहाँ के, दैट इज आल्सो द थिंग.
1: बिल्कुल. केरला की बात हो रही है, स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है. उन्होंने कहा कि भाई स्कूल बॉयज एंड जेंडर नॉन कंफर्मिंग चिल्ड्रन, उनको लंबे बाल करने की पूरी फ्रीडम है विदाउट फेसिंग पनिशमेंट. और नया फ्रीडम क्या है कि लड़के और बच्चे जो कि आइडेंटिफाई नहीं करते हैं विद अ स्पेसिफिक जेंडर कैन चूज देयर हेयर लेंथ एंड क्लोथिंग स्टाइल. और कोई हरास नहीं कर सकता उनको, स्कूल्स पनिश नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, मेंटली परेशान नहीं कर सकते उन बच्चों को जिनके लंबे बाल हैं. तो इसीलिए बस बाल साफ होने चाहिए, आंखों से पीछे होने चाहिए, और स्पोर्ट्स खेलते टाइम, लैब के टाइम या प्रैक्टिकल क्लासेस में सेफ्टी रूल्स फॉलो होने चाहिए. क्या ख्याल है तुम्हारा?
2: आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. आई तो कम्प्लीटली गो विद इट,
1: है ना.
2: मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, ये वाली तो हक तो लड़कों को भी है. एंड इनफैक्ट मुझे कभी लगता है कि लड़के हैव बेटर बाल. माई कजन ब्रदर, मेरे से लंबे बाल है उसके, और क्या क्वालिटी है उसके बाल, देख देख के हमें लगता है कि भाई थोड़े दे दे हमको, दे दे हमें चाहिए लंबे. बट देन इफ यू मेंटेन इट वेल, व्हाई नॉट?
1: या व्हाई नॉट? अभी क्या है ना कि सिंगापुर में ऑफकोर्स छोटे बाल रखने जरूरी है लड़कों को, ऐसा रूल है. लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे कि हॉन्गकॉन्ग, टेक्सस है, वहां पर लोगों ने केसेस भी करे हैं जाकर कोर्ट्स में, ये बोलते हुए कि भाई ये क्या बात है, पुराने जमाने के जो लॉज है उनको बदलो, लड़कों को भी पूरा का पूरा हक है. और आपको अगर ऐसी बातें सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सजन रेडियो मस्ती 24/7 लगाइयो जरा. क्यों भाई
2: शौक? और
0: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: भाई ये तो बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है। एंड सब सुन लो, सारी बंदियों बंदे आराम से सुनना, सबको चाहिए ये।
1: क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो सबको चाहिए? बहन बताओ तो सही मुझे। रेडियो मस्ती 24/7 पर
2: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फंकीएस्ट एंड द फनीएस्ट।
1: बताओ बताओ अंतरा बताओ,
0: रेणुका खराटो को लेकर आपका क्या विजन है?
1: ओ गॉड,
0: व्हाट इज योर?
1: ओ गॉड, बहुत ज्यादा मेरे, मैं कह रही हूँ मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं खराटो के साथ में, स्पेशली एक हॉस्पिटल में जो मैंने एक रात बिताई थी एक बार वेटिंग रूम में, और वहां पर एक आदमी जोर जोर से खराटन ले रहा था और मुझे तक गुस्सा आया। उसको बड़े सारे लोगों ने बोला, भाई साहब आप थोड़ी चेयर अपनी बाहर रख लो वेटिंग रूम से, सबको परेशान कर रहे हो। दैट गाय रिफ्यूज्ड, मैं तो यही सोऊंगा, एंड ही डिड नॉट लेट एनीबॉडी एल्स स्लीप इन द वेटिंग रूम। एंड यू कैन इमेजिन, सुबह उठते ही ना मैं वहां से निकली और मैंने ना उसको लात मारी, क्योंकि वो सो रहा था आराम से, ठीक है, लात मारी मैंने, उसकी आंख खुली तो मैं ना बिफोर ही कुड रिएक्ट मैंने कहा इलाज करवा लीजिए, हॉस्पिटल में ही तो हैं आप। और मैं बोल के भाग गई इससे पहले कि मेरे का जवाब देगा।
0: आई नो, आई कैन ओनली इमेजिन। सो वेल, लेट अस टॉक अबाउट द स्मार्ट बेड का ये इन्वेंशन। सो ये जो स्मार्ट बेड है, इट ऑटोमेटिकली सेपरेट्स द कपल। जब भी इसके बिल्ट इन सेंसर्स है, वो डिटेक्ट करते हैं अगर किसी ने स्नोर करना शुरू किया, ये स्मार्ट बेड ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देता है कपल के बीच एकदम, एंड द मैट्रेस स्लोली डिवाइड्स इनटू टू सेक्शंस एंड मूव्स द स्नोरिंग पार्टनर सेवरल फीट अवे विदाउट वेकिंग ईदर।
1: और कमरे में जगह ना हो तो
0: वो अलग बात है, एंड इट रिकनेक्ट्स इन द मॉर्निंग बिफोर दे वेक अप। सो बेसिकली दोनों पार्टनर्स प्रिटेंड दैट दे हैपनली लव बिसाइड ईच अदर ऑल डे।
1: इसको पुराने जमाने में हॉन्टेड बेड कहा जाता था। ओके, ये नए जमाने में, कम ऑन, सोचो।
0: आई नो,
1: सोचो,
0: मैंने हाउ आर थॉट्स आर इन ऑलवेज सिंक रेणुका, मेरा एग्जैक्टली सेम ख्याल आया कि भाई हॉरर मूवीज में हमने देखा हुआ था कि बेड बीच में से ऐसे अलग अलग हो रहे हैं।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जहाँ है हमें वही सो के उठना है, और हमारे पास ना हमारे हाथ पैर हैं जो परेशान करता है, हम उसको लात मार के गिरा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करने दो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: Musti partner event.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आज की जिंदगी में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक की नौकरी अगर किसी इंसान को करनी पड़े डे आफ्टर नाइट आफ्टर नाइट, तो वो नौकरी छोड़े तो कुछ गलत बात है या सही? अंतरा, तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ?
3: Setting the perfect hot temperature for Friday.
4: ना हो पाई ब्रो, ना हो पाई.
2: नहीं ना, ना बिल्कुल नहीं. I agree with you, totally 100%. लेकिन यहाँ पर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करना चाहेंगे ऑन रेडियो मस्ती 24/7. दिस इज मस्ती मैडनेस. अबे क्या है कि आप कहते हो कि मैं नहीं काम कर सकता, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी. एंड यू आर राइट इन सेइंग दैट, राइट? बिकॉज़ आप मतलब यू हैव टू लीव दैट जॉब. तो एक सिंगापुरियन आदमी ने ये बड़ी ही मुश्किल से ये बात सीखी कि भाई ये नौकरी छोड़ के उसने गलती करी है या सही किया है. ही वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स और उसने नौकरी छोड़ दी इसी वजह से.
4: ओके,
2: अब तुम सोचो उसके बाद अब तक जुलाई 2026 तक से जो उसने नौकरी छोड़ी, अब तक उसको 30 जॉब ओपनिंग्स के लिए वो अप्लाई कर चुका है और एक इंटरव्यू मिला है जिसमें कि वो रिजेक्ट हो गया. तो वो कह रहा है कि भाई अब 6 महीने होने को आए हैं मेरे जिंदगी के, मैंने सही किया या नहीं किया? तो भाई आप बताइए, आप बिना नौकरी के रहना पसंद करेंगे या फिर आप 10 बजे से सुबह रात के 2 बजे तक नौकरी जब आपकी होगी तो आप कहेंगे वाह एटलीस्ट आई हैव अ जॉब. बहुत बड़ा डिसीजन है भाई साहब, तुम क्या करोगे?
4: मैं लिखूंगी जी हाँ मस्ती, आई हैव समथिंग टू से.
2: इसीलिए ये प्रोमो ही था, ये प्रोमो ही था हमारे शो का डियर मस्ती. दिल से आप हमें लिख सकते हैं अपने दुख बांटने के लिए, हम आपको उसका जवाब भी देंगे. क्या देंगे दैट डिपेंड्स, सो राइट टू अस 9151893. बस वही बटन जो कि आपके ऐप में टॉप राइट पे है, भेज दो और सुनो सारी दुनिया के दुखड़े और उसके बाद हमारे ग्लोबल जवाब.
1: Oh yeah.

0: और हमारे दूसरे घंटे में जी हाँ अजीबोगरीब खबरों की जो ये बारिश होती है वो होती है हर फ्राइडे को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। इसे कहते हैं हम मस्ती मैडनेस।
1: Setting the perfect hot temper. Nothing right we talk about right इस वाले इस शो में। अच्छा भाई, ये जो हर जगह पर एक वेट लिमिट दिया जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कुछ सोचकर ही दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कि अगर इसके बाद भी तुमने उसमें बढ़ा दिया जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव फन, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा।
0: सही कहा।
1: ठीक है, आइए आपको ले चलते हैं मायामी के एक बैचलर पार्टी पे।
0: चलिए,
1: अब क्या है कि ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, इनको बैचलर्स मनानी थी, एक अनमैन्ड यॉट जो है इन्होंने रेंट की। अब बोट के ओनर ने उनको बोला हुआ था कि इसका वेट लिमिट है स्ट्रिक्ट 9 people only।
0: ओके,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: अब उन्होंने कहा यार बैचलर्स पार्टी है, हम क्या सिर्फ लड़के लड़के पार्टी कर, मतलब बैचलर्स है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है,
0: बनता है
1: ना?
0: बनता है।
1: तो क्योंकि बनता है तो भाई ये जो है 8 बंदे तो थे ही थे, बट दिस ग्रुप इनवाइटेड अराउंड मोर देन डजन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स ऑन टू द बोट कि ज्वाइन करो हमारा सेलिब्रेशन, फुल स्केल पार्टी, दारू पे हाय, दूसरी चीजों पे हाय, मतलब फार टू मेनी पैसेंजर्स, जहां पे इन्होंने बोला हुआ था कि सिर्फ 9 लोग होने चाहिए। नाउ द एक्सेस वेट के चक्कर में इन्हें की यॉट गई डूब, लाइक पलट,
0: ओप्स ओप्स,
1: सारे के सारे पानी में, एंड दे हैड टू वेट टिल द रेस्क्यू टीम एक्चुअली केम।
0: ओ, बच गए
1: भाई। Okay. हाँ, लेकर आए, बट बोट के ओनर जो है उसको तो जो चार्जेस लगे ले, इन लोग पे केस ठोक दिया गया है कि भाई मैंने तो तुमको बोला ही था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो साइन वाइन करते हैं,
0: हाँ,
1: भाई
0: exactly.
1: ये 8-9 लोगों का है, उनको कोई फर्क ही नहीं। कहता 8-9 बंदों में बैचलर्स कौन करता है, एटलीस्ट